सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 19 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 55 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर

0: में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अवध के दुलारे श्री राम की जननी श्री राम को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जितने दिन बिना राम के दर्शन के उन्होंने बिताए, हे विधाता, उनके भाग्य से उन दिनों को मिटा देना। अर्थात बिना राम दर्शन के जीवन में दिनों का भला क्या महत्व है।

अपने तन और मन को पावन करने हेतु प्राणी गंगा यमुना का स्नान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। परंतु जिनके हृदय में श्री हरि का पावन निवास है, उनका सर्वदा मंगल और कल्याण है, क्योंकि उन्हीं हरि के चरणों में श्री गंगा यमुना का वास है।

हे विधाता, मेरे मन में विषय रूपी दुष्टों का वास हो गया है। कृपा करके आप मेरे इस हृदय में विराजें और इन विषय रूपी समस्त दुष्टों का नाश करें, मुझे इनसे छुटकारा दिलाएं और आपकी अहेतु की कृपा प्रदान करें।

0: आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन भक्ति रचनाओं को सुना उन्हें स्वर प्रदान किया, हरिओम शरण नंदिनी शरण, लता मंगेशकर, डीवी पलुस्कर, पंडित भीमसेन जोशी और ये देशगान आपने सुना समवेत स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज आपको सुनवाते हैं मुकुंद माला से पाठ। आलेख और वाचन स्वर उमा गर्ग और पुष्पा अग्निहोत्री का है।
1: भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति

0: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दया निधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
1: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे,

तीर्थं पविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः।

हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा, तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।

भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।

0: खींच चित्त, तो ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के प्रसंग को स्वर प्रदान किया है रंजना जोगलेकर ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्रीराम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज सांध्यकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे

संसद के समक्ष मुद्दे। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रातःकालीन सभा में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें, खरीफ की सब्जियों की उन्नत प्रजातियां। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। प्रातः 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने पसंदीदा लोकगीतों को ब्रज लोक लहरी में। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9 बजे। आज के कलाकार होंगे साक्षी हांडा। इस कार्यक्रम में आपको आज सुनवाएंगे कुछ भजन। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय प्रातः 9:25 का रहेगा। प्रातः 9:30 पर आज सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। आज आप सुनेंगे कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। समय याद रखिए प्रातः 9:30 से। प्रातः 10 बजे का समय होगा विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा का। आज विज्ञान चर्चा होगी इस कार्यक्रम में, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की वैज्ञानिक समझ। सुनेगा भेंट वार्ता, वर्षा जल संरक्षण के स्थानीय पहल। विशेषज्ञ होंगे अली हैदर, खाद्य और प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। श्रृंखला विज्ञान जिनका ऋणी है के अंतर्गत आज प्रोफेसर यशपाल, भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक के प्रतिथि पर ये श्रृंखला रहेगी। संकलन और स्वर होगा चंद्रिका कुमार का। विज्ञान गल्प में आज बातें होंगी बादलों का संदेश विषय पर। आलेख और स्वर होगा अरविंद कुमार का। विज्ञान वार्ता में आज का विषय रहेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की सुपरफास्ट गणना। वार्ताकार नवीन वार्ष्णेय होंगे। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विज्ञान समाचार जो समसामयिक पर आधारित होंगे। कार्यक्रम में आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का। प्रस्तुति एवं संयोजन होगा ओम प्रकाश सिंह का। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी लेकर आएंगे दिन में 11 बजे से। और कार्यक्रम ब्रज लोकगीत का प्रसारण समय रहेगा 12:30 का। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे डोरी लाल गोला के गाए हुए कुछ लोकगीत। इस मास का गीत प्रसारित किया जाएगा 1:10 पर। 1:15 पर सुनिएगा गोपाल सक्सेना की लिखी हुई झलकी लक्ष्मी की सूझ। प्रस्तुति होगी आरके त्रिपाठी की। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम लेकर आएंगे 1:30 पर। 2:30 पर आपको सुनवाएंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी 5:30 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात का विषय रहेगा बरसात के मौसम में सावधानियां और बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय होगा 6:15 का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुन सकेंगे ब्रज लोकगीतों पर आधारित अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 का और 7:05 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। कवि होंगे पद्म कुमार पाठक। शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर और एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर सुहाने तराने। जी हाँ, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:15 पर। 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
खरीफ

0: की सब्जियों की उन्नत प्रजातियां, इस विषय पर आज आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलों में कद्दू, वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, भिंडी, लोबिया और सेम का उत्पादन लिया जाता है। आज आप इनकी प्रमुख जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहले हम भिंडी को लेते हैं। भिंडी की जो प्रजातियां हैं उसमें आज़ाद भिंडी 1, परवनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पूसा A-4 और BRS-6 प्रमुख किस्म हैं। बैंगन 2 तरह का होता है, लंबा और गोल। लंबी किस्मों में बैंगन की में आज़ाद क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति KS-331 और पंत सम्राट। गोल बैंगन में आज़ाद B-1, पंत ऋतुराज कल्याणपुर टाइप 3, KS-224 और पूसा पर्पल राउंड। बैंगन की संकर प्रजातियां भी हैं जिसमें आज़ाद हाइब्रिड, अर्का नवनीत, सुफल, सुप्रिया, पूसा हाइब्रिड 5 और 6। मिर्च मसाले के लिए भी उगाई जाती है जिसमें पंत C-1, कल्याणपुर चमन, पूसा ज्वाला KDCS-810। अगर गृह वाटिका में मिर्च लगाना चाहते हैं तो इसके लिए चंचल, पंजाब लाल, पूसा सदाबहार किस्म अच्छी है। अचार के लिए अचार 8 और अचार 36 किस्म उपयुक्त मानी गई है। लोबिया की जो किस्में हैं उसमें पूसा बरसाती, पूसा 2 फसली और पूसा कोमल। सेम की किस्म रजनी और टाइप 2। अब हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी किस्मों के बारे में। लौकी, जो लंबी लौकी आती है उसमें कल्याणपुर लंबी हरी, आज़ाद हरित, आज़ाद नूतन, पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन और अर्का बिहार। गोल लौकी किस्म है पंजाब गोल, पूसा संदेश, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। लौकी की ही संकर किस्मों में पूसा मंजरी, मेघदूत, वरद अच्छी किस्में हैं। तरोई में जो चिकनी होती हैं तोरई, उसमें कल्याणपुर हरी चिकनी, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया। धारदार भी होती हैं तरोई, उसमें पूसा नसदार, रिज जेड, पंजाब सदाबहार, CO-1। तरोई की संकर किस्मों में सुरेखा, हरिता, MSG-H-1। कद्दू कुल की जो किस्में हैं उसमें अर्का चंदन, पूसा विश्वास, पूसा विकास, अर्का सूर्यमुखी, अर्ली येलो और प्रोलिफिक सोलन बादामी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। संसदः आगामि मानसून सेशन इति प्रावृत सत्रात् पूर्वम् अद्य सर्वकारेण सर्वदलीय सभा आहूता। सत्रस्य कालखण्डे संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण कार्यं कर्तुं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहकार्यं याचयिष्यति। श्वः आरभ्य मानसून सत्रम् अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते, येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे की। नीचे सुनिए गीतादत्त, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ में जबक फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है प्रेम धवन ने, संगीत है चित्रगुप्त का।
1: बोल मेरी जान, तू कौन है?
2: परी।
1: बोल कहाँ से आई है?
2: आसमान से।
1: दिल का हाल बताएगी?
2: बताऊंगी।
1: जादू जरा दिखाएगी?
2: दिखाऊंगी।
1: तो बता क्या कहती शहजादे की तकदीर?
2: अरे वाह वाह वाह वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा

0: यहाँ क्यों आए हो?
1: अपने गुनाह का कफारा अदा करने।
0: चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती।
1: आइंदा मैं खुद अपनी सूरत छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए मेरे साथ चली जाओ। मैंने तुम्हें इस्फहान पहुंचाने का इंतजाम किया।
0: इस्फहान?
1: सोचने का वक्त नहीं है ज्यादा, जल्दी करो।

जबक फिल्म का ये गीत आपने सुना गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी, बलवीर और साथियों की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बंधन से। इस गीत को आवाज़ दी है प्रदीप और साथियों ने।

महल फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था जय नक्शाब ने, संगीत था खेमचंद प्रकाश का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूती तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मॉनसून की सक्रियता। मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों

0: सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी थी। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, संकल्प हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
1: मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वहीं अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में भी 569 करोड़ रुपए लागत से 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उसके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
1: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे कर 5 मिनट पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन कल से 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। अयोध्या के श्रीराम

0: जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने कल 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपियों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी देवी का और वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। यह दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई और जनकल्याण की कामना की। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुग्म के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटे से रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ाव की ओर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूटी तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मानसून की सक्रियता। मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुन बेवारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैया आप सभी को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और आज रविवार है वे के कारण आप सब सुनोगे अपने पसंद के लोकगीतन को। जय हम सब मिलके कहे हैं ब्रज लोक लहरी। और ब्रज लोक लहरी के तय हमारे पास लगातार संदेश आए गए हैं और आए भी रहे हैं। और जो नए श्रोता हमसे जुड़नो अभी जिनको भयो है वो हमें भेज सकें अपने संदेश अपने फरमाइश को हमारे जा व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर है 94-122-25-575। आप अपनो अपनी पसंद अपनो नाम जो आप सुनना चाहो वो भेजो और अब पढ़ें आपके संदेशन को और कार्यक्रम में शामिल करें आपके पसंद को लोकगीत को। तो बातें पहले जो हमारे श्रोता सबसे पहले हम संग जुड़े जा कार्यक्रम में वो हैं भोपालगढ़ राजस्थान ते धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और इनके सबरे संगी साथी जी। हमारे श्रोता हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके सबरे संगी साथी जी। हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार। और जे श्रोता हैं हमारे दतरेंगी ते भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आप सबकी पसंद को शामिल करें हैं और सुनवाए हैं मदन मोहन ब्रजवासी की गाय भे जा सुंदर से लोकगीत को।

जुलम करें ये घूंघट मार मेरी भोली मैया। अब भाई आपने सुनो जा लोकगीत कहूँ मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में। और अब पढ़ें आपके अगले संदेशों को। तो जे संदेश मिले हो पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता जुड़े हमारे संग सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इनके संग जे श्रोता हैं चंडीगढ़ ते सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। जिनके संग हमारे अगले संदेश को शामिल करें जे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव कुमार सचिव बायाल कुमार प्रथमेश देशमुख कुमारी प्रणाली देशमुख कुमारी कुमार सर्वद देशमुख कुमारी सानवी देशमुख कुमारी हर्षता देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख वायत परिवार। और जे श्रोता हैं दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा

ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। हमारे जो श्रोता हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान ताइड़े विजया तापड़े जिगाम विदर्भ से, वसंतराव भोजने और सुनंदा भोजने, प्रदीप भैया शामिल है गए हैं बिरला नगर ग्वालियर ते, और ये हमारे श्रोता हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ते। तो आप सबको सुनवावे हैं जालो गीत कुंज जय स्वर्दीनो है मृदुला चड्ढा ने।

कृष्ण मुरारी है अभी आपने सुनो मृदुला चड्ढा के स्वर में जा लोकगीत को, और अब आपको सुनवावे आपकी पसंद पे जे जे हमारे श्रोता हैं हिमांशी आरना क्रियांश पवन और सारा परिवार इनका जुड़ा हुआ है मंडी रामदास मथुरा ते, और जे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते, और जे हमारे श्रोता हैं श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा ते शारदा प्रसाद प्रजापति लक्ष्मी प्रजापति बेबी व्योमनी पुरंजय प्रजापति कविता गोविंद सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार, और जे श्रोता हैं खेल बाजार पानीपत ते नरेंद्र मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा लाड़ो कोयल मल्होत्रा पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक और इनके समस्त परिवारीजन, और जे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे संग मोताला महाराष्ट्र ते विजय सुरलकर रतनवाला सुरलकर ओम कुमार गुड़िया और इनके परिवारीजन, जे श्रोता हैं हमारे रिंगनी छत्तीसगढ़ ते दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, तो आप सुने हैं आप सबकी पसंद पे जा लोकगीत को। जय लोकगीते स्वर्धीनो है शालिनी शर्मा ने।

शालिनी शर्मा के गाए भए जालो गीत को अभी आपने सुनो और अब आपके संदेशन को शामिल करें। जे संदेशो मिलो औरंगाबाद ते औरंगाबाद मथुरा ते मोहिनी अग्रवाल को वकील की बगीची कॉलोनी ते और जे गुजरात गांधीग्राम ते प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश जौहरी जी को जे संदेशो आयो और जे हैं ग्राम ततारपुर बिसौली बदायूं ते डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सुनंदा यादव मयंक कौशिकी और पुष्पा यादव। जे हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा ते बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया और मयंक भाटिया। हमारे अगले श्रोता हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा ते राजेश सेन सुरेखा सेन शुभम सेन अक्षय सेन और इनके समस्त साथी गण। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन को संदेशों शामिल कियो और हमारे जे श्रोता जुड़ी भई हैं धौली प्याऊ मथुरा ते उमा शर्मा नितिन सचिव राधिका और जिगांव विदर्भ से वसंत राव भोज ने सुनंदा भोज ने पीएस नहावकर को जे संदेशा शामिल कियो। ग्राम फरासी जिला हिसार ते राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके संगी साथी हम संग जुड़े। पटेल नगर मलोट ते जुड़े डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया और गुड्डू इनके संग। हमारे अगले श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा शामिल भए। जे हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश ते गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के जे सबरे हमारे श्रोता हैं और पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल हंसमुख लाल खुशदिल पप्पू मैं खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल संजीव कुमार जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार को जे संदेशा आए गयो है चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते। और जे श्रोता हैं हमारे मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर ते मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी हिना कौसर और उनके सगरे संगी साथी। जी हमारे श्रोता देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया राधिका प्रभात देवी तामुरिया और इनको पोता मास्टर अल कबीर। जे श्रोता हैं अलीगंज बेनजीर जिला रामपुर ते धर्मपाल सैनी अरुणा सैनी हिमांशु सैनी प्रबल सैनी नैन्सी सैनी गैरी गौरी सैनी और इनको समस्त परिवार। ब्रजमाधुरी के कार्यक्रम में ही अगलो जे लोकगीत के ताई शामिल भयो संदेश है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र ते गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर और समस्त परिवारी जन। डोंगरगढ़ गांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ते राष्ट्रपाल

गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का, तन्मय गजभिये को संदेश शामिल भयो। और सादाबाद जिला हाथरस ते भूपेंद्र कुमार प्रजापति ने संदेश भेजो। और बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव, नौबत यादव, ग्राम पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ ते जे संदेश मिले उनको। और जे हैं हमारे श्रोता, बस स्टैंड के आगे बार है चौक छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, अखिलेश मिस्त्री, प्रवीण मिस्त्री, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भाभी, ममता देवी, रामकली, सावित्री अंश और मोहिनी, गोलू, नीरज, काजल, करण और समस्त बुंदेलखंड परिवार, बुंदेलखंड निवासी परिवारी जन। और बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और इनके समस्त संगी साथी। अब सुनावे आप सुनवावे आपके जा लोकगीत को, जाए आवाज़ देनी है डोरी लाल गोला ने।

0: दोरीलाल गुला के गायब है जाए लोक गीत के संग अब आज को कार्यक्रम ब्रज माधुरी को यहीं पे समापन करें हैं, लेवे हैं आपसे आज्ञा, स्वीकार करो हमारे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो

0: सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

0: राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने

0: मांगुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्ष

0: का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वाह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी, लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. Mini. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घर से। इस गीत को आवाज़ दे रही हैं लता मंगेशकर और शब्द रचना गुलजार की, संगीत राहुल देव वर्मन का।

दाग फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि।

0: रफू चक्कर फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और महेश कुमार के स्वरों में। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम गीतांजलि में आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, फिल्म अगर तुम ना होते से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना गुलशन बाबरा की, संगीत राहुल देव वर्मन का।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लीजिए सुनिए अर्पण फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अर्पण फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन। कलाकार हैं साक्षी हांडा। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये पहला भजन, रचना करमेती बाई की है।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं साक्षी हांडा। आइए इनके स्वर में सुनते हैं सूरदास जी की ये अगली रचना।

0: साक्षी हांडा के गाए हुए इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को हैं। अब तो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सामयिक चर्चा।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा।
3: भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ये एक आधुनिक व्यापक और ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार उदारीकरण और शुल्क में रियायतों के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक मजबूत करना है। इस समझौते से भारत के उद्योग और व्यापार जगत का क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी मैम, धन्यवाद।
3: आलोक जी, भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कितना महत्वपूर्ण कदम है?
4: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, अगर भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशंस की तरफ बढ़ना है तो मुक्त व्यापार समझौता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता की, जो जुलाई 2025 को एक समझौता किया गया था और 15 जुलाई 2026 को ये ऑपरेशनल लाया गया, ये मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम बात करें यूके की, तो भारत का जो यूके के साथ व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत ने 2025-26 में 39 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जिसमें यूके स्टेबल मार्केट के तौर पर भारत के लिए एक अच्छा बायलैटरल पार्टनर है, जहां पर लगातार द्विपक्षीय व्यापार को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते होने के बाद से ही जो तमाम ऐसे बायर्स जो यूके में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत के उत्पादों पर रुझान किया है। और मुक्त व्यापार समझौता अगर हम बात करें तो इसमें जो लेदर जा रहा है भारत से, उस पर 16% का शुल्क लगाया जाता था यूके के कस्टम्स या यूके की सरकार के द्वारा। इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद से वो जीरो हो गया है। अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, रेडीमेड गार्मेंट्स की बात करें, अपैरल्स की बात करें, उस पर 12% का टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ, वो जीरो हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, वो जीरो हो गया है। केमिकल्स में 8% का था, वो टैरिफ जीरो हो गया है। तो मुक्त व्यापार समझौता से ऐसे वो तमाम सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हों या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हों जो रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सारे सेक्टर्स को इस मुक्त व्यापार समझौता के माध्यम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर यूके की हम बात करें तो भारत का जो निर्यात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद, यूनाइटेड किंगडम हमारा एक अच्छा पार्टनर है, जहां पर लगातार

0: निर्यात बढ़ रहा है।
1: जी आलोक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जिनसे हमको मजबूती मिलेगी, चाहे वो निर्यात की बात हो या हम सर्विसेज की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है देश का, और जिस तरह के यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें या हम जैसे आपने लेदर की बात करी, केमिकल्स की बात करी, जिन चीजों पर फोकस है यूपी में, जिनका बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, यूपी के परिप्रेक्ष्य में कितना फायदेमंद है ये समझौता?
0: देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है, और उत्तर प्रदेश का जो निर्यात के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स का एनालाइज किया उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने ये पाया है कि 2,01,241 करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ, जो पूरे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है और दुनिया के तमाम देशों का एक्सपोर्ट है। जब हम यूके की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निर्यात को, तो हम ये देखते हैं कि जो यूके है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जहां पर लगभग 40,000 से 42,000 करोड़ का एक्सपोर्ट लगभग यूरोप को हुआ, यूके को हुआ। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है, जो लेदर सेक्टर्स है, इसके अलावा जो केमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, इनके लिए एक बड़ा मार्केट है। यूके जैसा हमने कहा एक स्थिर बाजार है। जब स्थिर बाजार होता है, जैसे हमने ट्रम्प का 2.0 टैरिफ देखा, हमने मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शंस देखा, यूके एक में स्थिरता बनी हुई है। तो जब यूके में स्थिरता बनी हुई है तो तमाम सारे ऐसे हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक यूनाइटेड किंगडम के तमाम बाजारों में बायर के साथ संपर्क कर रहे हैं और जितने भी ट्रेड फेयर हैं, एग्जीबिशंस, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूपी का जो निर्यात का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि इसको हम 2030 तक 4,00,000 करोड़ का निर्यात का लक्ष्य हम हासिल करेंगे, तो यूके का ये मुक्त व्यापार समझौता एक मील का पत्थर हमारे निर्यातकों के लिए साबित होने वाला है। और जो आज 2,01,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसमें यूके अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं।
1: आलोक जी, एक तरह से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, आईटी में, फार्मा में, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब में युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो युवा हैं इनको किस तरह का लाभ होने वाला है रोजगार के नजरिए से?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं रोजगार सृजन की, तो जितना जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है वैसे वैसे हमारे लिए रोजगार के अवसर भी एक्सप्लोर होते हैं। एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ इंजन के तौर पर तमाम प्रदेश सरकारें देखती हैं और भारत सरकार का ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, चाहे वो आईटी हो, प्रोफेशनल्स हो या अन्य सर्विसेज हमारी, इन सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज यूके जैसे बाजार में हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हो रही है। बाहर का कोई यूके का अगर कोई इन्वेस्टर भारत में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में कि हम वहां का इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, बाहर के हमारे पास ब्रांड भी आएंगे, यहाँ कंपनी स्टैब्लिश होंगी, रोजगार मिलेगा प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्सों में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई युवा बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई युवा यहीं पर ही पढ़ाई करके प्रदेश में अपनी सर्विसेज का लाभ लेते हुए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है सर्विसेज सेक्टर्स में भी या मर्चेंडाइज सेक्टर्स में भी, तो उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से देखने को मिलेंगी।
1: यूके के साथ जो समझौता हुआ उसमें सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और ये समझौता हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें आगे और जो निर्यातक हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या सरकार किसी तरह से राह आसान कर रही है?
0: देखिए, एक तो मुक्त व्यापार समझौता अभी 15 जुलाई को कंक्लूड किया गया जो कि ऑपरेशनल भी हो गया। अब इससे संबंधित हम ऐसे निर्यातकों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां पर हम निर्यातकों के बीच में विभाग जा रहे हैं वो आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी अवेयर हो इस मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के, उनको ये भी बताया जाए कि इस मुक्त व्यापार समझौते से जिन उत्पादों पर अभी तक आप अपने मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, जो टैरिफ जीरो होने की वजह से अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का जो हमारा निर्यात प्रोत्साहन विभाग है उसके माध्यम से हम यूके में बिजनेस डेलीगेशन को भी हम आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं, ताकि हम नए बायर्स को हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके। हम यूके से भी कुछ बायर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जो ऐसे छोटे एफपीओज हैं, छोटे कृषि वाले निर्यातक हैं, वो अगर बाहर नहीं जा सकते तो उनको हम उत्तर प्रदेश में ही बायर्स ला करके उनके साथ हम उनको कनेक्ट कराया जा सके, ताकि बायलेटरल ट्रेड की दिशा में निर्यात और आयात को आगे बढ़ाया जा सके।
1: आलोक जी, जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो जाहिर है कि हमको गुणवत्ता मानकों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं आप लोग कि गुणवत्ता जो मानक है उन पर खड़े उतरे और प्रोडक्ट को अप्रूवल मिले?
0: हाँ जी, देखिए, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो हमारा प्रोसेस फूड का सेक्टर है,

0: इन सेक्टर्स पर ज्यादा हमें हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता होगी और सरकार के तमाम विभाग, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कैसे हमें निर्यातकों को सपोर्ट करना है, कैसे निर्यातकों को गाइड करना है, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, इन सभी के माध्यम से हम क्वालिटी पर आने वाले समय पर फोकस करेंगे। और
1: आलोक जी, जब ये समझौता हुआ है तो इसके जरिए यूके का भी कुछ सामान भारतीय बाजारों तक पहुंचेगा, तो उससे क्या किसी स्थानीय उद्योग है उनको किसी तरह की कोई हानि होने की?
0: देखिए, इसमें जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इसमें यूके का भी सामान हमारे देश में या प्रदेश में आएगा। भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी तरीके का ऐसा उत्पाद जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान ना पहुंचाए या हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसमें यूके के उत्पादों को राहत नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर जो छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके का कहीं भी हार्म या नुकसान होने वाला नहीं है इस मुक्त व्यापार समझौते से।
1: जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से विकसित भारत की बात करती है लगातार सरकार, और इस समझौते के जरिए हम आर्थिक विकास के किस तरह के नए आयाम को छू पाएंगे और विकसित भारत बनाने में कितना ये हेल्पफुल होगा?
0: देखिए, जब विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, जब भारत विकसित होगा, और जब भारत विकसित होगा तो हम आजादी के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। उस दिशा में ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के मोर्चे पर, जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, जो हमारा स्टेबिलाइजेशन है वो स्थिर होता है। ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक मोर्चे पर भी, व्यापारिक मोर्चे पर भी और द्विपक्षीय मोर्चे पर भी ये मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से ये लिया गया है। और ऐसे कई मुक्त व्यापार समझौते आने वाले समय में सरकार बहुत तेजी से दुनिया के तमाम अन्य देश जो रह गए हैं उनके साथ भी हम भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो कंक्लूड किया जाए, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे लेके जा पाए।
2: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार थी तनवीर फातिमा।
4: सामयिक चर्चा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
5: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। जीना सुलभ बनता है बनाता है हमारा पर्यावरण। आलेख और वाचन स्वर है विठल सानिध्य का। आइए सुने कार्यक्रम आबोहवा।
6: श्रोताओं, ईश्वर ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कुछ बनाया है तो ये है हमारी प्रकृति। इसके मनमोहिनी सौंदर्य से व्यक्ति सदियों से आकर्षित होता आ रहा है तथा मन को तरोताजा व प्रफुल्लित बनाए रख रहा है। सावन भादो में इसका हरा भरा गदराया रूप तो स्वर्ग की सुखद कल्पना से ही दो कदम बढ़कर हमें आनंदित करता रहा है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में तो कला प्रेमियों के दिलों में इंद्रधनुष ही सतरंगी दस्तक देकर उनका संपूर्ण जीवन ही रंगों से सरोबार कर दिया। प्रकृति मानव जीवन को सुखमय मंगलमय बनाए रखती है। वह धरती के संपूर्ण जीव जगत को माँ की तरह पाल पोस कर जीवन के लिए प्रहरी बनी हुई है। भाइयों, प्रकृति के वन क्षेत्र में पाए जाने वाली शांति व एकांत के माहौल की उपयोगिता को समझकर ही हमारे ऋषि मुनि कलकल बहती हुई नदियों के पास आश्रम बनाकर आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेते रहे हैं। प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवों ने तो वन क्षेत्र को आकर्षण का केंद्र ही बना दिया। पर्यावरण प्रेमी एवं वन्य जीवों को स्वतंत्र रूप से विचरण करते देखने वाले जन इस प्रकृति की अनुकंपा से निहाल हो जाते हैं और ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के प्रभाव से पर्यावरण संरक्षण वाली रही है। जल, भूमि, वृक्ष, पशु, पक्षी, नदियां, तालाब, झील, सरोवर, स्रोतों को पूजने की परंपरा भी हमारी भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में अलग पहचान बनी हुई है। इनका संरक्षण एवं जरूरत के अनुसार सीमित प्रयोग करना हमारी महान भारतीय परंपरा रही है। लेकिन आज मानव की गतिविधियों ने मिट्टी, जल, जीव व जंगल को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। उसने अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति का बेरहमी से

0: दोहन किया हुआ है। जल का अविवेकपूर्ण दोहन, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग तथा अपशिष्ट विसर्जन में मानव जीवन को संकट के हवाले कर दिया गया है। भाइयों बहनों, राजस्थान में हाडोती प्रदेश की कृषि जगत के क्षेत्र में विशेष पहचान है। चंबल की नहरों का जल दूर दूर तक खेतों में पहुंचने तथा रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं व ट्रैक्टर के उपयोग से खेतों में भी मंगल गीत सुनाना चालू कर दिया। किसानों के घरों में संपन्नता की घंटियां बजने लगी। अन्न का उत्पादन इतना बढ़ने लगा कि बैलगाड़ियों की क्षमता छोटी पड़ने लगी। अब ट्रैक्टर से फसलों को मंडी की ओर ले जाया जा रहा है। बैल, हल, बैलगाड़ी व साइकिल पीछे छूटने लगी। कृषि जगत में मशीनीकरण स्थापित हो गया। गांव में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, फोर व्हीलर बढ़ने लगे। घर घर में लक्ष्मी कुंडी खटखटाने लगी। सुविधा व संपन्नता की चाह में गांव के लोग शहरों में निवास करने लगे और बस्तियां ढलान में बहते पानी की तरह बढ़ती रही। भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा और सड़कें आए दिन दुर्घटनाओं से कलंकित होने लगी। संपन्नता की इस आपाधापी से शहरी वातावरण अस्वस्थकारी हो गया। वाहनों के निकलते धुएं व उड़ती धूल मिट्टी ने व्यक्ति को शुद्ध वायु से महरूम सा कर दिया और हमारे तापमान में वृद्धि होने लगी। नागरिकों को भी अपनी स्वस्थ भूमिका निभानी होगी। हमारे जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को भी सजग होना होगा। हम सुधारवादी दृष्टिकोण से ही पर्यावरण को अनुकूल बना पाएंगे। ऐसा हमारा प्रण होना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए ताकि हमारी ये धरती बच सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बाल गोपाल।
2: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा। कार्यक्रम पेश कर रही हैं बच्चों की दीदी पूनम यादव।

0: दिन।
1: जय हिंद दीदी।
0: अच्छा बच्चों, आज हमारे स्टूडियो में हंसते मुस्कुराते चेहरे आए हैं मथुरा के कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से, जो हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल गोपाल, उसमें दे रहे हैं अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं चिन्मयी कटारा जी, जो इसी विद्यालय में अध्यापिका हैं। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करते हैं।
2: नमस्कार, आज के बाल गोपाल कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कान्हा माखन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं मिला जुला रंगारंग कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश वंदना के साथ।

0: अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने सहपाठी आकाशी गुप्ता को, जिनके चर्चा का विषय है नेल्सन मंडेला।
1: नमस्कार, मेरा नाम आकाशी गुप्ता है। आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि मानवता की चेतना का प्रतीक बन जाती हैं। 18 जुलाई ऐसी ही एक तिथि है। यह केवल नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस नहीं, उनके मूल्यों का उत्सव है, जिन्होंने पूरी दुनिया को समानता, न्याय और क्षमा का नया अर्थ सिखाया। कल्पना कीजिए, यदि आपके जीवन के 27 वर्ष छीन लिए जाएं, तो क्या आप समाज से बदला लेंगे? शायद अधिकांश लोग यही करें, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी जिसने 27 वर्ष के कारागार के बाद प्रतिशोध नहीं बल्कि क्षमा और मानवता का मार्ग चुना, यही व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नोबल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई 2010 को जब मंडेला 92 वर्ष के हुए, तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया, जिसने आप लोगों की भलाई के लिए सिर्फ काम किया अपितु उसकी कीमत भी चुकाई। इस दिवस का उद्देश्य केवल मंडेला को श्रद्धांजलि देना नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। इसी भावना से विश्व भर के लोगों को 67 मिनट समाज सेवा के लिए समर्पित करने का संदेश दिया जाता है। यह 67 मिनट मंडेला द्वारा मानवता की सेवा में बिताए गए लगभग 67 सालों का प्रतीक है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उस समय वहां रंग भेद अर्थात अपार्थाइड की अमानवीय व्यवस्था लागू थी, जिससे लोगों के साथ उनका त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अश्वेत नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और मतदान और सामान्यजनक जीवन के अधिकारों से वंचित रखा गया था। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से उसके त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या धर्म के कारण घृणा लेकर पैदा नहीं होता। यदि लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। इसी विचार को रखते हुए मंडेला ने अपार्थाइड के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना। उन्हें हिंसा नहीं बल्कि न्याय, लोकतंत्र और समानता की आवाज बुलंद की। इस संघर्ष की कीमत उन्हें 27 वर्ष का कारावास केप टाउन के किनारे रॉबिन द्वीप में बिताना पड़ा, किंतु जेल की कठिनाइयां भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। रिहा होने के बाद उन्होंने बदले की भावना नहीं अपनाई बल्कि क्षमा, मेल मिलाप और राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुना। यह कारण है कि वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। नेल्सन मंडेला ने हमें याद दिलाया, जब तक हमारे विश्व में गरीबी, अन्याय और घोर असमानता बनी रहे

0: तब तक वास्तव में हमें से कोई भी चैन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग कर हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रभावशाली कथन नहीं परंतु असल जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य है।
1: अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने सहपाठी मोहम्मद जैद को, जो अपने देशगान का गायन करेंगे।

अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ दीक्षा, निष्ठा, पलक, शिवांशी, सौम्य और प्रेरणा समवेत स्वर के लिए।

बहुत सुंदर देशगान के बाद हम दूसरी प्रस्तुति की तरफ अग्रसर होते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, इसकी जानकारी देने जा

0: सलोनी कुमारी।
1: नमस्कार, मैं सलोनी आज बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के विषय में वार्ता कर रही हूँ। यह दिवस 19 जुलाई 1969 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना था, ताकि बैंकिंग सुविधाएं केवल बड़े उद्योगपतियों और संपन्न लोगों तक सीमित ना रहें। इसके माध्यम से किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने लगे। इससे आर्थिक सामान्यता और बढ़ावा मिले और देश के विकास को नई दिशा। आज भारत डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और अन्य डिजिटल सेवाओं ने बैंकिंग को अधिक सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है। यह आधुनिक बैंक व्यवस्था देश की मजबूत वित्तीय प्रणाली का परिणाम है। समय के साथ बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम बैंकिंग सेवाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करें, डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। राष्ट्रीयकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग का अधिकार मिले, इसीलिए हमें अपने देश की बैंकिंग प्रणाली के महत्व को समझना और उसका सदुपयोग करना चाहिए। बैंकिंग की इस प्रक्रिया को हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए एम्बा सम्मानित करना चाहिए कि हम न केवल बैंकिंग का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करेंगे बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बैंक राष्ट्रीयकरण केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि यह आम जनता को सशक्त बनाने और देश में वित्तीय न्याय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी, इतनी मूल्यवान जानकारी हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। चलिए अब स्वागत करते हैं निधीश लवानिया का, जो एक स्वरचित कविता के साथ हमारे बीच प्रस्तुत हो रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं निधीश लवानिया अपनी एक स्वरचित कविता कहने जा रहा हूँ। क्यों वाद हो प्रतिवाद हो जब देश देता न्याय हो, क्यों वाद हो प्रतिवाद हो जब देश देता न्याय हो, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं जब देश हित की बात हो, जब देश हित की बात हो। मैं वेदना मैं कष्ट हूँ, मैं व्यथा देश आघात की, मैं वेदना मैं कष्ट हूँ, मैं व्यथा देश आघात की, मैं क्यों बटूं धर्म जाति में, मैं क्यों बटूं धर्म जाति में जब बात हो विश्व कल्याण की, जब बात हो जन कल्याण की। मैं देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी मैं कड़ी एकता विस्तार की, मैं देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी कड़ी एकता विस्तार की, बटने नहीं दूंगा वतन को, मिटने नहीं दूंगा वतन को, दूंगा चुनौती इस देश के गद्दारों को, चाहे आए कितनी भी विपत्ति, चाहे तन पर प्राणाघात हो, चाहे तन पर प्राणाघात हो। अंततः सभी से एक निवेदन अगली कुछ पंक्तियों में करना चाहूँगा। वृक्ष बचाना नीर बचाना अपने बालक को वीर बनाना, वृक्ष बचाना नीर बचाना अपने बालक को वीर बनाना, स्वाभिमान का पाठ कराना कर्तव्यों का बोध कराना, अपनी भाषा अपनी भूषा अपनी संस्कृति पर गर्व कराना, नैतिकता का ज्ञान कराना, अपने देश को अखंड बनाना अखंड बनाना। वंदे भारत, जय भारत।
0: धन्यवाद निधीश, इतनी सुंदर पंक्तियां हमारे साथ साझा करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रस्तुति देने जा रही हैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिता अरोड़ा।
3: जिंदगी जब तुझको समझा मौत फिर क्या चीज है, जिंदगी जब तुझको समझा मौत फिर क्या चीज है, ए वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है, तुझसे बड़ी क्या चीज है। टुडे आई एम हियर टू रेज पैट्रियटिज्म इन योर हार्ट, सो द टॉपिक ऑन व्हिच आई एम गोइंग टू स्पीक इज कारगिल विजय दिवस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी 26th जुलाई। दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द करेज sacrifice and patriotism of the brave soldiers of Indian Army. In the year 1999, enemy soldiers entered the Kargil region of Jammu and Kashmir and occupied some important mountain peaks. But our soldiers fought with great bravery.

0: in difficult weather condition. After weeks of hard fighting, India won the war and enemy soldiers were forced to leave our land. This victory is remembered as Kargil victory. Kargil Diwas is not just a celebration of victory, but it is also a day to remember the soldiers who gave their lives to protect our country. They left their families behind and stood fearlessly at the borders so that we could live in peace and with safety. Their love for the nation teaches us the true meaning of duty, courage, and selfless service. As students, we may not fight on battlefield, but we can serve our country by being honest, disciplined, hardworking, and responsible citizens. We should respect our national flag, follow the rules, help others, and work for the progress of our nation. Always remember, even small actions can make India more stronger. On this special day, let us salute our brave soldiers and express our heartfelt gratitude for their sacrifices. Their courage will always inspire us to love and serve our motherland with pride. Ant mein, मैं कारगिल युद्ध 1999 में अमर शहीद जवानों के सम्मान में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कारगिल विजय दिवस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अदम्य साहसी अमर शहीदों को मेरा शत शत नमन। कारगिल युद्ध में वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।
1: धन्यवाद दक्षिता अरोड़ा, विजय दिवस की यादें हमारे साथ ताजा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी प्रस्तुति की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसमें भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की गाथा हमें बताएंगी तनिष्का उपाध्याय।
2: शेरों के जैसे निडर व साहसी थे आजादी के दीवाने, वतन की रक्षा के लिए निकले थे ना कि खुद के लिए पैसे कमाने। हम तो बस ऐसे ही आजादी के नायकों पर उंगलियां उठा देते हैं, पर यह आसान काम नहीं होता। वे अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी नहीं आते देश को अपना नाम गिनाने। हमने तो आजाद मुल्क में पैदा होकर आजादी की कीमत भुला डाली है। गुलामी चीज क्या होती है, इस एहसास को जान से मिटा डाली है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इसी दिन हमारा देश लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। आज मैं इन्हीं महान सेनानियों में से एक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी बनी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा और अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया। उनका प्रसिद्ध नारा आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देता है, मैं झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 जून 1858 को ग्वालियर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका साहस और बलिदान आज भी हम सभी को प्रेरित करता है। आइए हम भी रानी लक्ष्मीबाई के साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान से प्रेरणा लें तथा अपने देश की सेवा और सम्मान का संकल्प लें। हम हिंदुस्तानी का अंदाजा दूसरों से थोड़ा अलग होता है। सिर्फ अंदाजा ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग होता है। दुनिया कहाँ रहती है, आसमान के तले, और हम हिंदुस्तानी रहते हैं भारत माता की आंचल तले। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपने ही देशवासियों से कुछ अपील करना चाहूंगी कि स्वतंत्रता

0: लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। आइए इस दिवस पर हम सब यही संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: वाह तनिष्का उपाध्याय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ लबीबा बेग को उनकी बहुत सुंदर स्पीच के साथ। आइए स्वागत करते हैं लबीबा बेग।
2: सो एन एंथुसियास्टिक मॉर्निंग टू एवरी लिसनर लिसनिंग मी। आई एम लबीबा बेग एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट पेट्रियोटिज्म, romanticizing love towards our beloved motherland, the land of murderers, the land known as Hindustan, Bharat, India. Today, I stand tall, I stand as a proud citizen of a country whose soul flows through the sacred Ganga and whose hands proudly hold Tiranga. This is the land of Satyam Shivam Sundaram, this is the nation of Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga. Nation who gave us Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, APJ Abdul Kalam, Bismillah Khan and every personality because of whom we are here. And who was once called uncivilized has given the world's oldest civilization of humanity. The civilization that someone once failed to understand is today respected across the globe. From sharing the message of Atithi Devo Bhava to reaching the moon, from ancient wisdom to modern innovations, India created history instead of following it like others. The tricolor of my nation will always fly the highest, not because it is a piece of cloth, but because every color in it carries the sacrifice of our martyrs, the courage of our soldiers, and the dreams of our 1.4 billion Indians. There is nothing greater than my motherland, but the heartbeat of 1.4 billion of dreams. Land of Gandhi, land of Lal Bal Pal, the land of Khan Abdul Ghaffar Khan and the land of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Now I would like to bind my words by saying, let the world hear us. India is great and will remain great forever until and unless it is giving birth to bravery. Thank you everyone.
1: Thanks Labiba Babe to make us aware about our patriotics.
3: तो बच्चों, इन प्यारी प्यारी प्रस्तुतियों के साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आप हमारा पता तो जरूर लिखेंगे। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा।
1: बच्चों जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आलेख, स्वर और प्रस्तुति सहयोग है चंद्रिका कुमार का। प्रस्तुति एवं संयोजन ओम प्रकाश सिंह का।
5: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।

श्रोताओं नमस्कार। विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ चंद्रिका कुमार। मानसून का ये मौसम हमें प्रकृति की अनमोल देन जल का महत्व याद दिलाता है, लेकिन आज यही मौसम हमें एक गंभीर प्रश्न के सामने भी खड़ा करता है। कभी अत्यधिक वर्षा, कभी लू की लंबी अवधि, कभी अचानक बाढ़ तो कभी सूखे जैसी परिस्थितियाँ ये संकेत देती हैं कि जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्य की आशंका नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। ऐसे समय में विज्ञान केवल समस्याओं की पहचान ही नहीं करता बल्कि उनके समाधान का

0: भी सुझाता है। मौसम के पूर्वानुमान से लेकर आपदा प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण तक हर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही विकास का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है। आज के अंक में हम जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की वैज्ञानिक समझ पर चर्चा करेंगे और गर्म मौसम की वैज्ञानिक समझ पर चर्चा करेंगे। वर्षा जल संरक्षण की स्थानीय पहल से जुड़ी एक विशेष भेंट वार्ता सुनेंगे और विज्ञान जिनका ऋणी है श्रृंखला में भारत के प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा विज्ञान संचारक प्रोफेसर यशपाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद करेंगे। आइए जिज्ञासा, ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। श्रोताओ, पृथ्वी का जलवायु तंत्र करोड़ों वर्षों से प्राकृतिक रूप से बदलता रहा है, लेकिन पिछले लगभग 150 वर्षों में मानव गतिविधियों ने इस परिवर्तन की गति को काफी बढ़ा दिया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान का प्रभाव केवल गर्मी तक सीमित नहीं है, इसका असर मानसून के स्वरूप, वर्षा की तीव्रता और मौसम की स्थितियों पर भी दिखाई पड़ता है। कहीं कुछ घंटों में महीनों जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। हीट वेव, बादल फटना, बाढ़, चक्रवात और जंगलों में आग जैसी चरम मौसमी घटनाएं अधिक तीव्र रूप में सामने आ रही हैं। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों का अध्ययन उपग्रहों, मौसम केंद्रों, समुद्री प्रेक्षणों और कंप्यूटर आधारित जलवायु मॉडलों की सहायता से करते हैं। इन अध्ययनों से न केवल भविष्य के मौसम और जलवायु का अनुमान लगाया जाता है, बल्कि आपदाओं के बचाव की योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकारों या वैज्ञानिकों के प्रयास पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा की बचत, वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। विज्ञान हमें चेतावनी भी देता है और समाधान भी। आवश्यकता है कि हम वैज्ञानिक सोच को अपनाते हुए प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग चुनें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी मिल सके। श्रोताओं, जल ही जीवन का आधार है और वर्षा का प्रत्येक जल कण भविष्य की अमूल्य धरोहर। बढ़ती जल समस्याओं और बदलते जलवायु परिदृश्य में वर्षा जल संरक्षण आज केवल एक विकल्प नहीं बल्कि समय की आवश्यकता बन चुका है। अच्छी बात ये है कि हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर वर्षा जल को संजोने और भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वर्षा जल संरक्षण की पहल विषय पर ये विशेष जानकारी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी। मैं अली हजर बोल रहा हूँ और मैं वर्तमान में खाद्य एवं विभाग में कार्यरत हूँ।
1: आज हम बात करेंगे आपसे जल संरक्षण के तकनीकी उपाय। पहले आप ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि जल संरक्षण आज इतना आवश्यक क्यों हो गया है।
2: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट विषय पर आपने आज बातचीत रखी है। सबसे पहले बात मैं आपको और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज के समय में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं से हमारा समाज दो चार हो रहा है। शहरीकरण और जल के अत्यधिक उपयोग की वजह से जल संकट हम देख रहे हैं दिन ब दिन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और देखने में आता है कि कई क्षेत्रों में भूजल स्तर जो है

0: वो काफी गिर चुका है और कुछ क्षेत्रों में नीचे लगातार जा रहा है। इसलिए घर और समाज दोनों स्तर पर मैं समझता हूँ जल संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, समय की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त मात्रा में जल उनकी आवश्यकता अनुसार मिल सके।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और यही मैं जानना चाहूंगी कि घर में जो जल होता है उसको बचाने के लिए हम सबसे सरल तकनीकें कौन कौन सी अपना सकते हैं कि हमारे घर में जो जल उपयोग होता है वही सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जल को ज्यादा नष्ट किया जाता है, वहीं बर्बादी शुरू होती है, तो उसको हम कैसे अपना सकते हैं, उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, क्या सरल तकनीक होती
0: है? बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक उपाय है ये। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई जल अगर मतलब संकट आ रहा है तो भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य, लेकिन ऐसा नहीं है। हम छोटे स्तर पर अपने घर पर भी छोटे छोटे उपाय करके जो है जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी नल वगैरह में हमारे लीकेज हम देखते हैं तो उसको तुरंत ठीक करा लें, या बाल्टी से स्नान करें। अक्सर लोग गाड़ियां धोने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे बचें। इसके अलावा बर्तन और कपड़े धोते समय पानी का सीमित उपयोग करें, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद न करें। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके हम जल को अपने घर के लिए बचा सकते हैं, पानी को।
1: जी, जैसे कि आपने कहा आरओ का पानी और सब्जी धोने का जो पानी है या कपड़े धोने का पानी है, इन सबके बचे हुए पानी को हम अपने घर के पौधों में भी डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: जब हम वो पानी पौधों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो जो हम पौधों के लिए पानी नया इस्तेमाल करते हैं वो बच जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: ऐसे में हम जो वर्षा जल का संचयन है, क्या हम घर के माध्यम से वर्षा के जल को संचित कर सकते हैं?
0: देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और जो जल के संरक्षण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, उसमें से एक उपाय ये भी है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपाय अपनाएं। इसके अंदर जो वर्षा का जल है उसको हम बहुत ही आसानी से और प्रभावी तकनीक के जरिए से घर की जो छत होती है उससे पाइपलाइन के माध्यम से वर्षा के पानी को टैंक या फिर जमीन में बने किसी रिचार्ज पिट में संग्रहित कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इससे भू जल स्तर भी बढ़ता है और साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: ये तो थी आपने जो बताई बातें हम परिवार के स्तर पर किस तरह से जल को संरक्षित कर सकते हैं, और अगर हम समाज की बात करें तो समाज के स्तर पर हम जल संरक्षण के लिए कौन से ऐसे कदम हैं जिनको उठाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं?
0: जी, कोई भी प्रयास हो सबसे पहले उसमें समाज की भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। जल संरक्षण भी चूंकि समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सामाजिक कोऑपरेशन यानी सोशल कोऑपरेशन भी होना बहुत जरूरी है। सामाजिक स्तर पर देखें तो सामूहिक प्रयास के अंतर्गत सामूहिक वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाना, तालाब बनाना, कुएं और जलाशयों का संरक्षण वगैरह। इसके अलावा पार्कों में ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक अपनाते हुए हम समाज में एक तरह से इस जल संरक्षण के विषय में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: जी, और हम देखते हैं कृषि का जब कार्य होता है तो कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ भी अगर जल बच जाएगा तो एक बहुत बड़ा स्तर हम जल का बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में जल बचाने की कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो उपयोगी हैं?
0: देखिए, बहुत सारी तकनीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और खास जरूरी है वो है कि कृषि में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। और इन तकनीकों से पौधों में आवश्यक मात्रा में पानी भी मिल जाता है और साथ ही साथ 30-50% तक पानी की बचत भी की जा सकती है।
1: जी, और अच्छा, बच्चे और जो युवा हैं वो जल को संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं अपना?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों और युवाओं पर ही किसी भी अभियान को सफल बनाने की ज्यादातर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि परिवार की एक मुख्य इकाई के रूप में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों और युवा घर में पानी बचाने की आदत डाल सकते हैं, दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं, स्कूलों में जल संरक्षण अभियान चला सकते हैं और पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाने में एक तरह से अपना भूमिका अदा कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जाते जाते अंत में एक सवाल और जानना चाहूंगी आपकी तरफ से, श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: देखिए, जल ही जीवन का आधार है, अगर जल है तो कल है। यदि हम आज से ही जल बचाने की आदत अपनाएंगे और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे तो भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अली हैदर खान साहब आपका, आपने हमसे बहुत अच्छी जानकारी साझा की जल संरक्षण को लेकर, और आपने बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं को दिए, बहुत सरल तरीके बताए आपने जल संरक्षण के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आइए अब आपको सुनवाते हैं विज्ञान गल्प, जिसका शीर्षक है बादलों का संदेश और गल्पकार है अरविंद कुमार।

सोने सोने खुशबू खुले हुए थे। दसवीं कक्षा का छात्र आरव अपनी छत पर बैठा बादलों को निहार रहा था। विज्ञान उसका प्रिय विषय था। वह अक्सर सोचता था कि क्या प्रकृति भी कभी मनुष्यों से बात कर सकती है। अचानक बिजली चमकी, तेज गर्जना हुई, फिर जैसे बादलों के बीच से एक मधुर गंभीर स्वर सुनाई दिया। आरव, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्वर फिर से गूंजा, डरो मत, हम बादल हैं। आज हम तुम्हें अपना संदेश सुनाने आए हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच आप बादल हैं? आप तो केवल पानी की बूंदों और

स्वर सुनाई दिया। आरव, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। स्वर फिर से गूंजा, डरो मत, हम बादल हैं। आज हम तुम्हें अपना संदेश सुनाने आए हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच आप बादल हैं? आप तो केवल पानी की बूंदों और जलवाष्प से बने होते हैं। बादल मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तुम्हें विज्ञान की अच्छी जानकारी है। हाँ, हम करोड़ों सूक्ष्म जल कणों और बर्फ के कणों से मिलकर बने हैं। सूर्य की ऊष्मा समुद्रों, नदियों और झीलों से जल को वाष्प में बदलती है। यही जलवाष्प ऊपर उठती है, ठंडी होती है और हमें जन्म देती है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। आरव बोला, फिर तो आप धरती पर जीवन के सबसे बड़े वाहक हैं। बिल्कुल, बादलों ने कहा, लेकिन आज हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसका असर हम पर भी पड़ रहा है। आरव ध्यान से सुन रहा था। बादल फिर बोले, पहले हम समय पर आते थे, संतुलित वर्षा करते थे। अब कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और कहीं महीनों तक बारिश ही नहीं होती। ये केवल हमारा स्वभाव नहीं बदला है, बल्कि पृथ्वी का बदलता जलवायु तंत्र इसका कारण है। आरव ने पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, बादलों ने उत्तर दिया। यदि हर वर्ष व्यक्ति वर्षा जल का संरक्षण करे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, ऊर्जा की बचत करे और प्रदूषण कम करे, तो पृथ्वी का संतुलन फिर से सुधर सकता है। इतने में वर्षा शुरू हो गई। बारिश की बूंदें छत पर रखी खाली बाल्टी में गिरने लगी। बादलों ने कहा, देखो, हमारी हर बूंद अनमोल है। यदि इसे बह जाने दिया तो कुछ ही महीनों बाद पानी की कमी की शिकायत करना उचित नहीं होगा। वर्षा जल को संजोना ही भविष्य को सुरक्षित करना है। आरव ने निश्चित किया कि वो अपने विद्यालय में वर्षा जल संरक्षण अभियान चलाएगा। अगले ही सप्ताह उसने विज्ञान शिक्षक से बात की। विद्यालय की छत से वर्षा जल को एक भूमिगत टैंक में एकत्र करने की योजना बनाई गई। बच्चों ने मिलकर परिसर में पौधे लगाए और आसपास के लोगों को भी वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद जब गर्मियों में भी विद्यालय के हैंडपंप में पर्याप्त पानी मिला, तो सभी ने महसूस किया कि छोटे छोटे वैज्ञानिक उपाय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक रात फिर बादल आए। इस बार उनकी गर्जना में चिंता नहीं, प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, आरव, याद रखो, विज्ञान केवल प्रयोगशाला में नहीं रहता। विज्ञान तब जीवित होता है जब उसका ज्ञान समाज के काम आता है। आरव ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे बादलों ने पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश छोड़ दिया हो। प्रकृति का सम्मान करो, विज्ञान को अपनाओ और जल की हर बूंद को भविष्य की अमानत समझकर सहेजो। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आरव के मन में केवल पानी की बूंदें नहीं, बल्कि विज्ञान, पर्यावरण और जिम्मेदारी का एक नया बीज अंकुरित हो रहा था। यही था बादलों का संदेश, एक ऐसा संदेश जिसे यदि हम आज समझ लें तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी।

कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं और आपको एक ऐसी किताब ढूंढनी है जिसमें जीवन का रहस्य छिपा है। अगर आप आज के सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर को यह काम देंगे तो वह एक-एक करके हर अलमारी को चेक करेगा। उसे वह किताब ढूंढने में शायद आपकी पूरी उम्र लग जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी मशीन आने वाली है जो लाइब्रेरी की हर अलमारी को एक साथ देख सकती है, जो हजारों साल का काम चंद मिनटों में कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। यह सिर्फ एक तेज कंप्यूटर नहीं है, बल्कि यह गणना करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम कैसे करता है। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हमारे घर में जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है, वे क्लासिकल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये बिट्स पर काम करते हैं। बिट्स मतलब या तो जीरो या वन। जैसे घर का स्विच होता है, या तो पंखा चलेगा या बंद रहेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्वांटम की दुनिया निराली है। यहाँ होते हैं क्यूबिट्स। क्यूबिट्स की सबसे बड़ी शक्ति है सुपर पोजिशन। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक सिक्का अपनी हथेली पर रखें तो वह या तो हेड्स होगा या टेल्स। यह हमारा पुराना कंप्यूटर है, लेकिन जब आप उसी सिक्के को जमीन पर लट्टू की तरह घुमाते हैं तो वह घूमते हुए एक ही समय में हेड्स भी है और टेल्स भी है। आप बता नहीं सकते कि वह क्या है जब तक कि वह रुक न जाए। क्वांटम कंप्यूटर इसी घूमते हुए सिक्के की स्थिति में काम करता है। इसी वजह से वह एक साथ करोड़ों संभावनाओं को प्रोसेस कर सकता है। जहां पुराना कंप्यूटर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता है, क्वांटम कंप्यूटर सीधे मंजर पर छलांग लगाता है। क्वांटम कंप्यूटर का दूसरा जादू है एंटेंगलमेंट। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। इसका मतलब है कि दो क्वांटम कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक को यहाँ पृथ्वी पर बदलेंगे तो दूसरा, चाहे ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो, वह तुरंत बदल जाएगा। यह टेलीपोर्टेशन जैसा लगता है ना? इसी जुड़ाव की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत हर नए क्यूबिट के साथ दोगुनी नहीं बल्कि घातीय रूप से बढ़ती जाती है। अगर हम सिर्फ 50 से 100 परफेक्ट क्यूबिट्स का कंप्यूटर बना लें तो वह दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स को एक साथ मिलाकर भी हरा सकता है। अब बड़ा सवाल, आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या बदलेगा? क्या इससे सिर्फ गेम तेज चलेंगे? नहीं दोस्तों, इसका असर बहुत गहरा है, जैसे बीमारियों का अंत। आज वैज्ञानिक जब कोई नई दवा बनाते हैं तो उन्हें लैब में सालों तक टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा केमिकल शरीर पर कैसा असर करेगा। क्वांटम कंप्यूटर शरीर के एक-एक सेल और मॉलिक्यूल की डिजिटल कॉपी बनाकर कुछ ही घंटों में बता देगा कि कौन सी दवा कैंसर या अल्जाइमर को जड़ से मिटा सकती है। अभी एक नई दवा बनाने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर शरीर के अणुओं की इतनी सटीक नकल कर सकेगा कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज चुटकियों में खोजा जा सकेगा। दूसरा, मौसम की सटीक भविष्यवाणी। अभी हम अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर हवा के हर एक कण की गणना करके सटीक बता पाएगा कि कब और कहाँ छाता लेकर निकलना है। पर्यावरण की रक्षा, यह हवा से कार्बन सोखने के नए तरीके और ऐसी बैटरी बनाने में मदद करेगा जो एक बार चार्ज होने पर हजारों किलोमीटर चले। ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स के बारे में यदि कहें तो आप सोचिए, अगर आपके शहर की हर एम्बुलेंस को हमेशा वह रास्ता मिले जहां जीरो ट्रैफिक हो, क्वांटम कंप्यूटिंग पूरे शहर के ट्रैफिक को एक साथ मैनेज कर सकती है। हालांकि यह राह इतनी आसान भी नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें काम करने के लिए अंतरिक्ष से भी ज़्यादा ठंडी जगह की जरूरत होती है, शून्य से लगभग 273 डिग्री नीचे। जरा सी गर्मी या कंपन इनका संतुलन बिगाड़ देती है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और हमारे प्यारे भारत के वैज्ञानिक भी इस पर जीत हासिल कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया है। हम उस दिन के करीब हैं जब भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर बनेगा और दुनिया को दिशा दिखाएगा। गूगल ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर से गण

0: तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञान गल्प, जिसका शीर्षक था बादलों का संदेश, और गल्पकार थे अरविंद कुमार। और आइए आप सुनते हैं विज्ञान वार्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की सुपर फास्ट गणना। वार्ताकार है नवीन वार्षणी।
1: आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जो विज्ञान और कल्पना के बीच की कड़ी है।

0: करने का दावा किया है। इसमें कहा गया है कि क्वांटम कंप्यूटर से जो गणना 6.18 सेकंड में की गई, उसे करने में सुपर कंप्यूटर को 47 साल लग सकते हैं। गूगल की ओर से जिस क्वांटम कंप्यूटर से गणना करने का दावा किया गया है, वह 70 क्यूबिट्स का बताया जा रहा है। इससे पहले 2019 में गूगल ने जिस क्वांटम कंप्यूटर से गणना का दावा किया था, वह 53 क्यूबिट्स का था। गूगल ने विश्व के 10 बड़े विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के साथ इस पर शोध किया है। क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग उस क्षेत्र में किया जाता है जहां ज्यादा से ज्यादा गणना करने की आवश्यकता हो। ये विभिन्न आंकड़ों, समय, परिस्थिति, मौसम, कीमतें आदि की एक साथ गणना कर ऐसा नतीजा सुझा सकता है जो ठीक हो। दुनिया भर में कई देश और निजी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर बनाने में जुटी हैं। दुनिया भर में ज्यादातर कंपनियों की तरफ से अभी इसका प्रोटोटाइप ही तैयार किया जा सका है, क्योंकि क्वांटम एक बड़ी चुनौती भी है। इसे ठंडा रखने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो आवश्यकता है। क्वांटम कंप्यूटर डेटा सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। क्यूबिट्स में गणना करने की वजह से हैकर्स इस तक पहुंच भी नहीं पाते। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर की मदद से स्पेस की जानकारी के साथ साथ अपने आसपास की ऐसी गतिविधियों की गणना की जा सकती है जिन्हें सामान्य तौर पर नहीं मापा जा सकता। तो आज हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे परमाणु कण हमारे भविष्य की गणनाओं को सुपर फास्ट बनाने वाले हैं। तकनीक का यह सफर अभी शुरू हुआ है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, सवाल पूछते रहें और याद रखें, भविष्य उन्हीं का है जो आज सीख रहे हैं।
1: तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की सुपर फास्ट गणना, और वार्ताकार थे नवीन वार्षणी। अब समय है विज्ञान समाचार का। आइए जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत की कुछ प्रमुख हलचल। भारत ने अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी को और गति दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन से जुड़े विभिन्न परीक्षणों और प्रणालियों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजना है। ये मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। नई AI आधारित प्रणालियां एक्सरे, MRI और अन्य चिकित्सीय जांचों के विश्लेषण में चिकित्सकों की सहायता कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोगों की शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार में मदद मिलेगी। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा ही लिया जाएगा। देश भर में मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षा जल का उचित संग्रहण भूजल स्तर को सुधारने और भविष्य में जल संकट से निपटने का प्रभावी उपाय है। नागरिकों से भी अपने घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की गई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विश्व भर में अनुसंधान लगातार जारी है। हाल ही के अध्ययनों में अत्यधिक तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार जारी है। स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हरित ऊर्जा भारत के ऊर्जा परिदृश्य की प्रमुख आधारशिला बनेगी। तो ये थे विज्ञान समाचार। श्रोताओं, विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा की आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी।

0: तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग था चंद्रिका कुमार का। प्रस्तुति एवं संयोजन ओपी सिंह का था। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 होने वाले हैं। आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

आजा नचले, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म दिल तेरा आशिक से।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में आपने सुना आरजू फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था अनु मलिक का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मोहब्बत से। इस गीत को आवाज़ दी है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने।

मोहब्बत इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर और रीमा राकेश नाथ ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, फिल्म प्यार तूने क्या किया से।

0: प्यार तूने क्या किया। इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले, सुखविंदर और सोनू निगम की आवाजों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी
3: जी, किसी नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह ग्राम नगर बजई राया से आपसे मुखातिब हुई।
2: नेत्रपाल जी, क्या हाल चाल है आजकल?
3: आजकल ठीक है, आराम कर रहा हूँ। रिटायर तो हुई हूँ, हो गया 77 का।
2: जी जी, आदमी कभी रिटायर नहीं हुआ करते, हमेशा काम करते रहते हैं।
3: नहीं तो विभाग से हो गया, कृषि विभाग से शायद हो गया।
2: जी जी, लेकिन अभी भी आप लगातार कर्म करते रहिए और हमेशा एक्टिव रहिए।
3: वो सर कर रहा हूँ।
2: बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
3: आज है फिल्म है सफर।
2: सफर फिल्म से कौन सा गीत सुनवाएं?
3: नदिया चले चले धारा, चंदा चले चले तारा, तुमको चलना होगा।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सर। राधे राधे।
2: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो दीक्षित जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आगरा से यानी खंदौली से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं लवानिया साहब?
1: बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए हमारी हेलो आकाशवाणी टीम, और आप कैसे हैं?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल?
1: थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है आजकल।
0: जी, लेकिन ध्यान रखिए अपना, ठीक हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, ध्यान रख रहे हैं, आंखों में थोड़ी सी दिक्कत रही है सर, तो चल रहा है वही ट्रीटमेंट उसका।
0: बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: नागिन फिल्म का गाना है, पुरानी वाली जो नागिन है,
0: जी
1: गाना है भीगा भीगा है समा, लता जी की आवाज में।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद लवानिया जी।
1: धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते,
1: सर, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदो जिला उज्जैन से। जी
0: स्वागत है प्रेम सिंह जी।
1: थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी तो आपकी तरह एकदम अच्छा हूँ।
0: जी, और उज्जैन में मौसम कैसा है?
1: जी मौसम का मतलब बरसात का इंतजार कर रहे हैं, बरसात थोड़ी कम हुई है अभी,
0: जी, उमस होगी
1: लेकिन
0: फिर
1: तो
0: तो।
1: हाँ काफी उमस है और सोयाबीन की फसल लगा रखी है, तो अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है।
0: अच्छा बताइए,
1: जी
0: आज के
1: और
0: कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: सर फिल्म का नाम रहेगा कसूर
0: जी
1: और गाने के बोल है दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू, अलका याग्निक की आवाज में है।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: मैं चिरमिरी कुरासा काली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से मृगवान सिंह बोल रहा हूँ। जीपीपीएफ में हूँ सर, और यहाँ पर तो मौसम बना हुआ है, बादल भी किया है, पानी आ रहा है, बूंदाबांदी और थोड़ा तेज अब बढ़ सकता है।
0: जी
1: तो आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है चश्मे बद्दू और गीत बोले कहाँ से आए बदरा, गायिका हेमंती शुक्ला और यशुदास।
0: सुनवाते हैं इंद्र भान जी आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: जय माता दी।
1: जय माता दी।
0: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसनल बुगला।
1: जी जी जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहली बार फोन किया है?
0: जी सर, काफी दिनों में लगाया मेरा कॉल, ऐसे तो लगातार रहता हूँ
1: अच्छा
0: मैं।
1: अच्छा क्या करते हैं आप?
0: जी सर, हम खेती बाड़ी करते हैं।
1: अच्छा, क्या हो रहा है खेती में?
0: अभी खेतों में बाजरा लगाए थे सर, 15 दिन हो गए आज।
1: अच्छा, बारिश कैसी हो रही है जयपुर में?
0: बारिश तो बाजरा लगाया।

0: परिवार में सर बारिश का इंतजार है, आई नहीं। जी
1: अच्छा,
0: आप
1: और
0: बताइए।
1: परिवार में सब ठीक हैं?
0: जी सब बढ़िया है, आपको उधर कैसा हो रहा है मौसम?
1: उमस भरी गर्मी है अभी तो।
0: वहाँ भी नहीं है सर बारिश?
1: जी, बताइए क्या फरमाइश है आज।
0: जी सर मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है अखियों से गोली मारे,
1: जी
0: और उसमें गाने के बोले दुपट्टे को संभाल सोनी, ये गाना है।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

FM 102.2 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का हमारा आज का विषय है बरसात में अपने खान पान का ध्यान रखें। श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में संक्रमण का जो खतरा होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए ताज़ा, गर्म और हल्का घर का बना हुआ खाना ही खाएं। बाहर का तला भुना और जो स्ट्रीट फूड होता है उसे खाने से बचें। कटी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से पनपते हैं। इसके अलावा साफ़ पानी पिएं और मच्छरों से अपना बचाव करें।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

श्रोताओं, बरसात के मौसम में सी फूड खाने से बचें, क्योंकि ये उनका प्रजनन का समय होता है जिससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, पत्ता गोभी है, इसे भी खाने से बचें क्योंकि उनकी पत्तियों में कीड़े और नमी अधिक होती है। श्रोताओं, हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर वाला ही पिएं। आप तुलसी, अदरक की हर्बल चाय या गर्म सूप पी सकते हैं जो कि गले और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमलों और नालियों की सफाई रखें। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छरदानी या मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें।

श्रोताओ, बरसात के मौसम में भीगने पर तुरंत सूखे और साफ कपड़े पहनें। गीले जूते और मोजे पहनने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पैरों को हमेशा सूखा रखें। नमी के कारण त्वचा पर जो रैशेज हो सकते हैं, इसलिए टेलकम पाउडर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कानों में पानी न जाने दें, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। श्रोताओ, इसके साथ ही बारिश में भीगने के बाद घर पहुंचकर तुरंत नहा लें और सूखे कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूखते हों, ताकि नमी से त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन ना हो। बाहर से आने के बाद खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोएं। श्रोताओ, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कूलर, गमलों और टायरों में पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के बाहर जो बिजली के नंगे तार और खंभे होते हैं, उनको बिल्कुल भी ना छुएं। बच्चों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सिखाएं। अपने गैजेट्स जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, इसको वाटरप्रूफ बैग कवर में सुरक्षित रखें घर से बाहर निकलते वक्त।

श्रोताओं, बारिश के मौसम में घर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सीलन को रोकना, फर्श को सूखा रखना और कीटाणुनाशक का उपयोग करते रहना। घर के कोनों में फफूंद को पनपने न दें और वेंटिलेशन यानी कि हवा की आवाजाही बनाए रखें। नमक और फिनाइल का उपयोग करें। जब भी आप घर में पोंछा लगाएं तो फर्श पर नमी और बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए पोंछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक या फिनाइल अवश्य डालें। दीवार पर जमे काले या हरे फफूंद को सिरके और पानी के घोल से साफ करें। भारी कालीन या गलीचों को हटा दें क्योंकि उनमें नमी से बदबू और गंदगी भर जाती है और जिससे कि बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं।

श्रोताओं, अलमारी और कैबिनेट से बदबू और फंगस को रोकने के लिए सिलिका जेल के पैकेट या कपूर का इस्तेमाल करें। जूते चप्पलों को बाहर रखें। घर के मुख्य द्वार पर मोटे डोरमेट लगाएं ताकि जूते, कीचड़ और नमी बाहर ही रुक जाएं। घर में या आसपास पानी जमा ना होने दें और नियमित रूप से किचन बाथरूम के पाइपों की जांच करते रहें। और इसके साथ ही श्रोताओं, यदि आप बाहर यात्रा पर जा रहे हैं तो सड़कों पर भरे हुए पानी और जल भराव वाले स्थानों से दूर रहें। बारिश के समय सड़क फिसलन भरी होती है, इसलिए धीमी गति से चलें और अपनी गाड़ी के वाइपर्स व हेडलाइट्स की जांच पहले ही कर लें। हमेशा अपने साथ एक छोटी मेडिकल किट हमेशा रखें। और श्रोताओं, यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस बारिश के मौसम में जो है लुत्फ़ उठा सकेंगे और बीमार होने से बचे रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था बरसात में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्मी कव्वाली।

भूपेंद्र सिंह, अभिजीत, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुनी फिल्म शोले की ये कव्वाली। और आइए अब सुनते हैं अगली कव्वाली, जिसे गाया है भरत जोशी ने फिल्म जंजीर के लिए।

ہم سفر ہم راز ہو تا قیامت، تا قیامت جو

अनुपमा देशपांडे और जहीद नाज की आवाज़ों में अभी आपने सुनी एक कव्वाली। फिल्म का नाम था हीरो का चोर। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 100।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
7: आराम से मैडम।
6: क्या
7: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
8: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
9: प्रस्तुत है ब्रज लोक गीत। आज के कलाकार हैं डोरीलाल गोला।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे डोरीलाल गोला। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्धस्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र

0: सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम। रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर आप सुनेंगे गोपाल सक्सेना की लिखी हुई झलकी लक्ष्मी की सूझ, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज की बात होगी बरसात के मौसम में सावधानियां और बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस विषय पर।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय पर। साथ ही श्रोता मन भवन के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों का भी आनंद ले सकेंगे।

संध्या 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। कवि होंगे पद्म कुमार पाठक। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

बोल है मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। स्वर अंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा के हैं। गीत लिखा है ब्रह्मानंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं इस मास का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत, बोल थे मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। इस गीत को स्वर दिए थे अंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा ने, गीत लिखा था ब्रह्मानंद ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं गोपाल सक्सेना की लिखी हुई झलकी लक्ष्मी की सूच, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की है।
1: की सूझ प्रस्तुत है गोपाल सक्सेना की लिखी ये झलकी, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

0: रानी।
1: फिर वही बात, मैं तेरी रानी। अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाती रहोगी?
0: अजी बोलूंगी, अभी मुंह भी खोलूंगी।
1: अरे तो मुंह खोलो रानी, और नहीं तो फिर वही बात।
0: ये देखिए, चांदी जैसी सफेद चमचमाती ट्रे को देखिए।
1: अरे रे, ये ट्रे क्या मेरी ससुराल से आई है?
0: आप ही बताइए ना।
1: तुम ही बताओ, स्टील की इस खूबसूरत ट्रे का रहस्य क्या है? फिर वही बात, अब बताओ भी ना।
0: तो मुंह खोलिए और पहले थोड़ी आइसक्रीम खाइए।
1: अरे रे, अरे अरे नहीं भाई, अरे आइसक्रीम मेरे दांतों को ठंडा कर देती है। अब बस भी करो
0: प्लीज एक चम्मच और ले लीजिए ना मेरे कहने से।
1: ना। अब बताओ ना, इस आइसक्रीम और ट्रे का माजरा क्या है?
0: सब पता चल जाएगा। आइसक्रीम ट्रे के आगमन की खुशी में मैंने मंगवाई है।
1: फिर वही बात, मेरी रानी, रानी बड़ी सयानी, मेरी रानी।
2: अरे भाई मुकुट लाल जी है क्या?
0: लीजिए आपके गुल्लू जी भी आ गए।
1: आओ जी आओ जी। अरे भाई कमाल कर दिया, बड़े अवसर पर आए हो भाई।
2: अरे भाई ये क्या चल रहा है साहब? अरे रानी भाभी आज फुलझड़ी की तरह चहक रही हो।
0: अरे भाई साहब, आप भी तो अगरबत्ती की तरह महक रहे हैं।
1: फिर वही बात, रानी गुल्लू जी को आइसक्रीम चटाओ।
2: चटाओ।
1: फिर वही बात, आप आइसक्रीम लीजिए लीजिए।
2: वाह क्या लजीज आइसक्रीम है। वाह वाह मजा आ गया। क्या जी?
1: भाई ये तो सब रानी जी की मेहरबानी है।
2: वाह भाई वाह, हमारी भाभी महान है। हिमालय से ऊंची और गंगा से भी निर्मल।
0: गुल्लू जी आज तो आप भूगोल का पाठ पढ़ा रहे हैं।
2: भाई मुकुट तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें लक्ष्मी के समान बीवी मिली है।
1: फिर वही बात, लेकिन रानी तो यह बताने को तैयार नहीं है कि ये प्लेट कहां से भेंट आई है।
0: तो सुनिए, दिवाली के त्योहार पर घर की गई सफाई में मैंने अपनी शादी वाले आपके सूट के बदले में ट्रे खरीदी है।
1: मेरा सूट? मेरा सूट? भाई तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी शादी का मेरा वाला सूट? अरे लेकिन वो सूट तो मेरे लिए भाग्यशाली था।
0: लेकिन काफी पुराना हो गया था।
1: पुरानी तो तुम भी कम नहीं हो गई हो मेरी गुल बदन।
2: अरे रे रे रे, आप लोग तो बखीलों की तरह झगड़ने लगे भाई।
1: लेकिन उस सूट के पैंट की जेब में तो मेरे शेयर सर्टिफिकेट रखे थे भैये। अरे मैं तो लुट गया, हाय मेरे शेयर सर्टिफिकेट, अब क्या होगा। हाय।

0: हाँ, और इस ट्रे को याद रखूं।
1: और क्या, अब इस यादगार ट्रे पर सुनहरे अक्षरों में लिखवा दो, रानी और मुकुट की शादी के सूट के बदले खरीदी गई शानदार ट्रे।
0: फिर वही बात,

0: नंदन गोपाल नंदलाल, नंदन गोपाल नंदलाल।
1: वाह वाह, क्या संगीत है जीजा जी।
2: फिर वही बात, ध्यान भंग कर दिया ना।
1: ध्यान फिर से कर लीजिए। दीदी कहाँ है?
2: फिर वही बात, अरे दीदी कहाँ जाएंगी, दीदी की दौड़ रसोई तक।
3: अरे गीता, तू कब आई?
1: फिर वही बात।
3: कौन सी बात?
2: अरे भाई शोर मत करो, ध्वनि प्रदूषण होता है। आज का अखबार पढ़ लेने दो।
1: अजीब, क्या रखा है अखबार में? वही भाषण, वही घोषणाएं, लॉटरी के नंबर और शेयर बाजार।
2: तुम लोगों को पता भी है, अखबार समाज का दर्पण होता है
1: और अखबार पढ़ने वाले समाज के श्रृंगार होते हैं।

0: हेलो। हाँ हाँ जी, क्या कहा जी? रॉन्ग नंबर? अरे ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पागल खाने से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है। बेअकल कहीं के।
1: कौन था जी?
0: अब पता नहीं कौन था, कह रहा था दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, किसी का इलाज कराना है, सीट चाहिए। बेवकूफ।
1: टेलीफोन भी वो बला है जीजा जी, जो रखे टेलीफोन वो भी परेशान और जिसके ना हो वो भी हैरान।
2: टेलीफोन तो इस युग का चमत्कार है।
1: अरे रे बाबा, आप लोगों के यहाँ तो अखबार के पहाड़ जमा है, रद्दी क्यों नहीं बेचते?
2: वह दिन हवा हुए जब खलील मियाँ फाकता उड़ाया करते थे, अब तो अखबार की रद्दी खरीदने को फेरी वाला भी तैयार नहीं।
0: लोग शायद रद्दी जमा करने को ही अखबार खरीदते।
1: ये तो सरासर ठगी है।
2: अरे भाई, अब वामपंथी बहस को खत्म करो, मैं चाय बना के लाती हूँ।
0: फिर वही चाय, मुझे नहीं पीनी।
1: हाय, कैसे भाषण दे रहे हैं नेता धनीराम की तरह। दफ्तर में तो हर दस्तखत के बाद चाय सुरखते रहते हैं।
0: दफ्तर की बात और है, वहाँ तो पीनी पड़ती है, पिलानी पड़ती है दिन भर।
2: हाय मरी चाय, चाय
1: चाय आधुनिक समाज का चलन है जीजा जी।
2: तभी तो छोटे से लेकर बड़े सौदे बिना चाय पानी के आजकल संपन्न नहीं होते।
1: चाय की आड़ में तो ना जाने क्या क्या होता है।
2: चाय एक विचार है, दफ्तर में काम करने वाले का पवित्रतम उपहार है, व्यवहार है।
1: जीजा जी भी तो चाय के बहाने।
2: चाय के बहाने
1: रिश्वत लेते हैं।
2: और भी गुल्लू जी है ना, दफ्तर में उनके चाय पीने का रिकॉर्ड है कि 6 घंटे में 25 चाय सरलता से पीते हैं।
1: रिश्वत लेना तो बहुत बुरी बात है।
2: नहीं, चाय पीना बुरी बात है।
0: गजब हो गया, अरे गुल्लू जी का एक्सीडेंट हो गया। ये देखो आज का अखबार।
2: हाय राम, ये तो बहुत बुरी खबर है।
0: मैं तो तैयार होकर निकलता हूँ।
1: अजी जीजा जी, सुना आपने, गुल्लू जी का एक्सीडेंट
2: हुआ क्या? लेकिन
1: यह पूछो कि क्या नहीं हुआ।
0: फिर वही बात, चुप करो।
2: लीजिए, फंटू आ रहा है।
0: फंटू आओ भाई।
3: बाबूजी, अब अस्पताल चलो, गुल्लू जी अस्पताल में आपका ही नाम लड़ रहे हैं।
0: मेरा नाम?
3: बड़ा भयानक हादसा है, गुल्लू जी की मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई।
0: मैं कई दिन से गुल्लू जी को समझा रहा था, भाई संभल कर चलो, सड़क पर मौत मंडराती है आजकल।
3: हाँ जी, यमराज महाराज का पहरा बढ़ता ही जा रहा है, सड़क पर मरने खपने वालों की लाइनें लगी हैं।
2: जैसी करनी वैसी भरनी।
1: जैसा बोगे वैसा काटना तो पड़ेगा ही।
3: जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।
0: अब तुम लोग बोलते ही रहोगे।
2: मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
0: मुझसे?
2: जी आपसे, गुल्लू जी से और आप जैसे तमाम नौकरी पेशा लोगों से।
0: फिर वही बात,
2: 100 बातों की एक बात है।
0: रानी वक्त मत बर्बाद करो, मुझे अस्पताल पहुँचना।

0: लेकिन अस्पताल जाने से पहले आज अभी आपको मुझे वचन देना होगा।
1: तुम्हें हमेशा वचन और नियम गलत समय पर ही याद आते हैं। मैं
0: देखो गीता, आज ही ने रोक लो। मैं आपसे विनती करती हूँ।
1: हाँ ठीक है जल्दी करो, छोटे छोटे डायलॉग बोलो।
0: आज आप भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर शपथ लीजिए कि आज से रिश्वत का एक पैसा भी स्वीकार नहीं करोगे।
1: क्या, तुम्हारी खोपड़ी तो ठीक है?
0: एकदम कहती हूँ, आप रिश्वत नहीं लेंगे।
2: हाँ जीजा जी, आप रिश्वत नहीं कबूल करोगे। बुरा पैसा बुरा भविष्य।
3: मैं तो कान पकड़ता हूँ बाबूजी, रिश्वत में मैं किसी की सुपारी भी नहीं खाऊंगा।
0: हम जैसे भी रहेंगे संतोष से रहेंगे, भगवान से वायदा कीजिए।
3: अजी बाबूजी, आप कसम ले भी लीजिए ना, ये लक्ष्मी की सूझ है।
2: लक्ष्मी की सूझ मानो, समय को पहचानो।
1: फिर वही बात, ठीक है मैं कसम खाता हूँ, कल पहली तारीख से रिश्वत बंद। थैंक यू रानी, गीता जी ऑफ फन टू।
4: अभी तक आप सुन रहे थे गोपाल सक्सेना की लिखी झलकी लक्ष्मी की सूझ। इस झलकी में भाग लेने वाले कलाकार थे राजू रॉड्रिक्स, योगेंद्र कौशिक, आनंद वल्लभ गोस्वामी, लक्ष्मी अरोड़ा और बबीता शर्मा। इस झलकी को प्रस्तुत किया आर के त्रिपाठी ने।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा उर्वरकों का संतुलित उपयोग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषयों पर। साथ ही श्रोता संध्या 6:45 पर सुनेंगे संध्या वंदन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं गैर फिल्मी भक्ति गीत। शाम सुहानी कार्यक्रम संध्या 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा और संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। कवि होंगे पद्म कुमार पाठक। रात्रि 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति OP सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब। ओपी सिंह जी, आपको भी हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी नमस्कार देवराज जी, और सभी श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस बात के लिए उनकी तारीफ भी करता हूं कि जब भी हम उनके साथ मुखातिब होते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने सुझाव के साथ, अपनी
0: शिकायतों के साथ और प्रतिक्रियाओं के साथ हमेशा हाजिर रहते हैं।
1: और उससे भी बड़ी बात यह कि वो हमारे कार्यक्रमों को नियमित सुनते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने, सुझाव देने या शिकायत भी करने के लिए कम से कम कार्यक्रम तो सुनना पड़ेगा ना।
0: जी बिल्कुल, और कार्यक्रमों को सुन करके ही हमारे श्रोता न केवल प्रतिक्रियाएं देते हैं और सार्थक प्रतिक्रियाएं देते हैं, और उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं वो हमारे लिए एक रास्ते का काम करती हैं, यानी हमारे लिए वो निर्देशन का काम करती
1: हैं। जी एक ऐसा रोड मैप जिस पर चल करके आकाशवाणी के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सोचा जाता है, समझा जाता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। निश्चित तौर पर श्रोताओं की जो सुझाव है वो हमेशा सर्वोपरि होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कोई कार्यक्रम जब बना रहे होते हैं तो ये पहले जहन में होता है कि श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को क्या इस तरह से लेंगे, या श्रोताओं की क्या इस तरह की वो है तो हम इस कार्यक्रम को पहले से ऐसा बना लें, ऐसा सोच लें।
0: जी
1: तो ये श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं तो बहुत कहें कि हमारे लिए मायने रखती है।
0: बिल्कुल मायने रखती है, और हम जो भी कार्यक्रम तैयार करते हैं वो श्रोताओं के लिए ही तो करते हैं।
1: जी जी जी,
0: श्रोता उन्हें सुनते हैं और पसंद करते हैं।
1: जी तो अभी श्रोताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक प्रतिक्रियाएं आती हैं देवराज जी की, जो समय चल रहा है इस समय, चूंकि बरसात का समय है और आने वाले समय में अभी ये मौसम जारी रहेगा,
0: बिल्कुल,
1: तो इस समय तापमान भी है, नमी भी है, तो हमारे आसपास जो पौधरोपण के कार्य है, वृक्षारोपण के कार्य है, जल संरक्षण के कार्य है, या फिर जल भराव से होने वाली आने वाले समय में बहुत सारी मौसमी जो बीमारियां हो सकती हैं, भाई पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, मक्खियां पैदा होंगी, तो डिसेंट्री का है, मलेरिया का है, डेंगू का है, ये चीजें महीने दो महीने बाद बीमारी के रूप में आती हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम थोड़ा सा ये सावधान हो जाएं कि बरसात निश्चित तौर पर अच्छी है, बरसात जब भी आती है सुखद होती है,
0: मौसम सुहाना हो जाता है,
1: लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें भी आती हैं जो हमें चेतावनी देती है कि भाई हमें पानी का भराव नहीं होने देना है, कीचड़ नहीं होने देनी है, गंदगी नहीं होने देनी है, हमें ऐसे में क्या करना है, वृक्षारोपण करना है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अच्छे काम करने हैं, जो तालाब हमने बनाए थे गर्मियों में अब उनमें पानी जा रहा है कि नहीं, अगर भर गए तो कहीं कटाव तो नहीं हो रहा है, तो पानी के संरक्षण, भूमि के संरक्षण और वृक्षारोपण, ये एक ही सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जिनको एक दूसरे से जोड़ करके अगर हम देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा उसपे।
0: बिल्कुल, और अगर हरी भरी धरती होती है तो आंखों को सुखद लगता है, दिल को सुकून प्राप्त होता है।
1: इसी तरह के आपने बहुत सारे प्रोग्राम पिछले जो है पखवाड़े से चला रखे, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हुए, तो इस पर निश्चित तौर पर हमारे श्रोता प्रतिक्रिया देंगे।
0: और अब देखिए
1: आना शुरू हो गया,
0: फोन आना शुरू हो गए हैं, तो लेते हैं फोन कॉल।
1: जी
0: हेलो,
2: बात फोन कॉल के साथ।
1: जी नमस्कार, महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं।
2: जी सर, सिंह साहब राधे राधे।
1: राधे राधे, राधे राधे, कैसे हैं आप?
2: अरे बाबू जी हम तो बढ़िया हैं, और आपके कार्यक्रम सुनकर और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, पत्रों के साथ, एसएमएस के साथ, क्या कुछ इस बार आपकी प्रतिक्रिया है? पिछली बार काफी आपने प्रतिक्रियाएं दी थी, सुझाव दिए थे, तो उन पे तो हम अमल कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपका ये जो वीक है हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ कैसा रहा, उस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।
2: सर बुधवार दिनांक 15/7 को किसान वाणी कार्यक्रम में अंकित अग्रवाल जी से एक अच्छी सुनी जो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई।
1: हाँ, जो एआई पर जो हमारी बातचीत थी।
2: जी
1: हाँ, युवा है वो, प्रगतिशील किसान है और एआई से जुड़े हुए हैं, एमबीए हैं, फिर भी खेतीबाड़ी में देखिए वो नए नए प्रयोग करके देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जब युवा आते हैं हमारे समाज में तो एक बड़ी भूमिका लेकर के आते हैं, बड़ा वो लेकर के आते हैं।
2: यहाँ आपसे एक निवेदन करेंगे हम।
0: जी स्वागत
2: सर। क्या है कि ये हेलो किसान वाणी है ना, जो प्रत्येक मंगलवार को जाता है, कोई ना कोई नया विषय लेके आते हैं।
1: जी जी जी,
2: चाहे वो पशुओं से संबंधित हो या फिर खेती किसानी से।
1: हाँ,
2: उस दिन क्या कर मात्र 30 मिनट का कार्यक्रम है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर उन्हें अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि इस कार्यक्रम को आप 7 बजे तक कर दीजिए, इसकी मतलब अवधि और बढ़ा दीजिए।

0: अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि उस दिन सिर्फ किसान वाणी जो है थोड़ा सा समय उसका बढ़ा दिया जाए, बाकी दिन में भली आधा घंटे रखे हम, ये कहना चाह रहे हैं आप?
1: केवल उसी से।
2: जी
0: जी जी जी जी, चलिए वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बनेगा तो देखो महेंद्र सिंह जी, हम जरूर कहेंगे, लेकिन हर बार की तरह जवाब हमारा ये होता है समय सीमा में बंधे लोग हैं।
2: जी जी, और उसके बाद जो कार्यक्रम आता है वो है संध्या वंदन, यानी जिसमें आप फिल्मी भक्ति गीतों का आनंद लेते हैं, तो
0: देखेंगे अगर हमारे किसान भाई जुड़े रहेंगे तो कभी थोड़ा बहुत कोई प्रश्न आते रहते हैं तो उनको कोशिश करेंगे कि एक दो प्रश्न और ज्यादा लिए जाएं, जिससे हमारे एक दो किसान भाई का मार्गदर्शन उचित रूप से हो सके।
1: एक दिन में सर कुछ भी नहीं होता, देखिए संध्या वंदन तो डेली प्रोग्राम प्रसारित होता है, एक दिन न सही लेकिन उस दिन 15 मिनट और हमें
0: हमने वही आपको एक इशारे में बताया कि थोड़ा सा उसकी सीमा बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी सीमा में जो एक दो हमारे किसान भाई समाहित हो सकेंगे, सुझाव आ सकेंगे, तो इसका हम स्वागत करते हैं आपका। बाकी प्रतिक्रियाएं दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर एक बात और कहूंगा,
2: जी
1: जो भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन है, इसमें आपको पंडित प्रदीप जी को जरूर शामिल किया करें, उनके गाए हुए भजन।
0: चलिए सुबह की बात कर रहे हैं आप?
1: जी
0: ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपका सुझाव ठीक है और आप इस तरह के सुझाव तो अच्छे ही देते हैं देवराज जी।
2: जी
0: इनका ये सुझाव अच्छा है और प्रदीप जी के जो देशभक्ति परक जो गीत है उनको हम लिया करेंगे, तो आपका इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार सिंह साहब, एक और फोन आ रहा है, लेते हैं।
0: स्वागत करते हैं अपने श्रोता का।
2: हेलो
3: नमस्कार।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: कैसे हैं आप जनाब?
2: एकदम अच्छे हैं, अपना परिचय दीजिए और हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कह डालिए।
3: बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको और आपके स्टेशन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा आदाब।
0: जी अब्बासी जी, रोड पे हैं क्या, रास्ते में, जर्नी में?
3: जी जी जी, गाड़ी साइड में लगा के तो कॉल लगाई थी मैंने आपको।
2: बिल्कुल
0: ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल यात्रा में हैं। जी
3: ड्राइव कर रहा था मैं तो साइड में चलते चलते अचानक मुझे याद आया कि मुझे आपसे बात करनी है।
0: चलिए आप इतना हमें याद रखते हैं, इतना हमें बिल्कुल नवाजते हैं, तो पहले तो आपकी यात्रा शुभ हो जहाँ भी आप जा रहे हैं जिस काम के लिए भी। बाकी प्रतिक्रिया किस तरह की है, प्रोग्रामों के बारे में बता दीजिए
3: जनाब। बस ये है कि आज मैंने पूरा आधा घंटा ट्राई किया हेलो में जो हुआ माता आपका,
0: जी
3: मगर मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ, जबकि 2-3 बार बेल भी बजी थी पूरी।
0: तो देवराज जी तो बैठे हैं, आप शिकायत कर सकते हैं इनसे।
2: अब्बासी जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: नमस्कार सर। नमस्कार
2: नमस्कार, और हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारे श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम है, बहुत सारे श्रोता हमारे इस समय लाइन पर होते हैं क्योंकि संख्या काफी अधिक है श्रोताओं की, तो लगातार हमारे श्रोता फोन करते हैं तो अन्य जो श्रोता लाइन पर होते हैं तो उन्हें बिजी लगता है कि फोन नहीं उठा
0: रहे हैं उसमें, तो हम तो अब्बासी जी इसमें यही कहते हैं कि भाई जिसकी भी फरमाइश आ जाए, जब भी जिसका लग जाए, अपना मान के सुनिए क्योंकि सबकी फरमाइश है, आपकी भी बहुत सारे लोग फरमाइश सुनते हैं, तो कभी आपका ना लगे तो दिल छोटा ना करें, दुखी ना हो। और
3: बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बस वही एक बात आ जाती है, मतलब आप ये कहेंगे कि डिमांड वाली, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का भी समय अगर आप थोड़ा और बढ़ा दें तो और ज्यादा लोगों को कॉल पे बात करने का, अपनी बातें शेयर करने का मौका मिल जाएगा।
0: अब्बासी जी फिर हमें भी थोड़ा सा ये लगता है कहीं हमारी अहमियत कम न हो जाए, हर रोज एक घंटा करेंगे तो फिर लोग फिर देवराज जी को कौन सुनेगा, संजय भाई को कौन सुनेगा, रश्मि शर्मा को कौन याद करेगा है?
3: सर आप कह रहे हो अहमियत बिल्कुल कम नहीं हो सकती क्योंकि आप तो एक नायाब हीरा है, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से मतलब श्रोताओं से बातचीत करते हैं हर प्रोग्राम में और उनके मैसेजेस को पत्रों को भी शामिल करते हैं, गाने एक से एक बेहतरीन प्ले करते हैं, तो इसलिए हम तो मतलब हमारा शब्द ही नहीं है आप सभी आरजेस के लिए कि हम क्या कहें, और आप ऐसी बात कह के हमें दिल को ठीक पहुंचा रहे हैं कि हमारी हिम्मत कम हो जाएगी।
0: नहीं
3: आपकी अहमियत तो दिन पे दिन बढ़ने पे, जितने भी आरजेस है ना प्रोग्राम करते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
3: इसकी मेहनत तो सराहते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि औरों का भी नाम सुने, औरों की भी कॉल सुने, ऐसा नहीं है सुनने, मगर फिर भी अब मन में जो चीज होती है तो वो तो शेयर करने से ही पता लगता है ना।
0: ये प्रोग्राम तो है ही इसीलिए कि हम कम से कम श्रोताओं की उन बातों को भी सुने जो प्रोग्राम के माध्यम से नहीं जा पाती है, प्रोग्राम के माध्यम से नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ तो देखो सीमित

0: दायरा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम श्रोताओं की उन बातों को भी लेते हैं कि जिनके सुझाव है, जिनकी जानकारी उनके पास है, प्रोग्रामों में क्या तब्दीली करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो नीतिगत है लेकिन प्रोग्रामों के जो सुझाव है वो निश्चित तौर पर उसमें मान्य होते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को ऐसा कर लो, इसका समय ऐसा कर लो। और ये तो ये आप लोगों का बड़प्पन है कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो आप न हो तो फिर हमारा भी तो कोई अस्तित्व नहीं है।
1: और अब्बासी जी, अगर आप हम लोगों की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित मानिए हमारा हौसला और दुगना चौगना हो जाता है।
2: सर ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है, हकीकत अब मैं अपने दिल से ये अल्फाज बयान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
1: बिल्कुल,
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हम यहाँ बैठे आपको सुन रहे हैं। देखिए आर्टिस्ट और लिसनर का एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि अगर लिसनर नहीं है तो आरजे नहीं है और आरजे नहीं है तो लिसनर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक दूसरे से कहते ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
2: जी जी जी,
0: कभी इधर से उठाएंगे
2: तो सुनेंगे नहीं, आपकी कमियों को बताएंगे नहीं, तो आप अपने प्रोग्रामों में और कैसे अच्छी मतलब बेहतर से बेहतर बनाएंगे।
1: जी अब्बासी जी, ये दिल से दिल का रिश्ता है।
2: जी जनाब,
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो सिंह साहब, हमारे श्रोताओं ने भी फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी बात रखी। हाँ, और
0: अभी देखो अगर आपका वो हो इजाजत तो मैं एक पत्र पढ़ देता हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: पत्र क्या बल्कि SMS है
1: जी,
0: जो राही जी ने व्यक्तिगत लिखा है। आप जानते ही राही जी के नाम से मैं प्रकाश राही जी की बात कर रहा हूँ, गोवर्धन से आप लिख रहे हैं कि आपने इस वीक जो है काफी कुछ अच्छे कार्यक्रम पर्यावरण पर भी किए और हेल्थ पर
1: जी।
0: तो इनका कहना है कि हेल्थ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और इस तरह से अगर व्यक्ति इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बात कही जा रही है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, अगर अमल में थोड़ा सा भी ले आते हैं तो हम बहुत सारी समस्याएं जो जीवन में होती हैं वो उनसे पार पा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इलाज से बचाव बेहतर है।
1: बिल्कुल,
0: तो बचाव की बात आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं तक हमेशा पहुंचती रहती है, तो ये एक अच्छा प्रयास है, इसके लिए ये हमें धन्यवाद दे रहे हैं
1: जी। और हमारे सुनने वाले जागरूक भी होते हैं
0: जी
1: इस संबंध में। और सिंह साहब, एक SMS मुझे मिला है और वो लिखा है ज्ञान सिंह जी ने छाता से
0: जी।
1: तीन कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है और तीनों ही कार्यक्रम हमारे पुराने कार्यक्रम हैं। ये कहते हैं ये रास्ते जिंदगी के कार्यक्रम पहले की तरह से शुरू कर दिया जाए, और दो कार्यक्रम जो इन्होंने सुन रखे हैं यानी इन्हें फिर से सुनवाने की मांग कर रहे हैं। रूपक इन्होंने सुना था यात्रा रंगमंच की, ये इसे दोबारा सुनना चाहते हैं, और इसी प्रकार से एक रूपक श्रृंखला हमारे यहाँ से पहले प्रसारित हुई है ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे
0: जी, जी।
1: ये दोबारा से इसे शुरू करवाना चाहते हैं।
0: चलिए, ये तो हमारे पास जो देवराज जी चंक है
1: जी,
0: उसमें हम फिर से शुरू कर देंगे
1: जी।
0: और ये अच्छे कार्यक्रम थे, निश्चित तौर पर बढ़िया कार्यक्रम थे, ब्रज से जुड़े हुए कार्यक्रम थे,
1: श्रोताओं ने पसंद भी किए,
0: तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी जो ब्रज की वो है
1: जी
0: कल्चर, उससे जुड़े कार्यक्रम है, तो इस सुझाव पर तो गौर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: और जब भी एक नियत समय आता है तो उनका कोशिश करेंगे कि जो है सुनवा दिए जाए कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, और अब
0: समय हो रहा है,
1: और अब कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले हम श्रोताओं को बता दें इस कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर
0: जी।
1: हमारा नंबर है 25 30 135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन कर सकते हैं, और इसके लिए समय रहेगा शुक्रवार के दिन 12:30 से।
0: और जो श्रोता हमको SMS लिखना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर वही है 94-122-25-575। इस फोन नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो भी शामिल करेंगे। चलते चलते अगर आप कहें तो मैं पता भी बता दूं, जो श्रोता पत्र लिखना चाहें उनके लिए ये कार्यक्रम का नाम तो थोड़ा सा बदल गया है लेकिन आगे का वही रहेगा। द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन कोड है 281003।
1: अगले सप्ताह अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब होंगे इस कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हम करते हैं श्रोताओं से नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। बोल लिखे थे एस एच बिहारी ने, संगीत दिया था ओपी नैयर ने। और आइए आप सुनते हैं फिल्म एक नया रिश्ता का ये गीत। स्वर भूपिंदर का है, संगीत खयाम साहब का है।

जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान

0: खास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन

0: और अचानक बाढ़ आई जिसमें तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के पांच अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने

0: वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म घराना का ये गाना। बोल लिखे थे इस गीत के शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत SD वर्मन का है।

अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम था फ़र्ज़। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल्ली का ठक्का ये गाना। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत दिया है रवि ने।
1: ये रातें, ये मौसम।

अभी आपने सुना फिल्म हिमालय की गोद में का ये वाला गाना, और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था इंदीवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म पारस मणि का ये गीत, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आजकल मौसम चल रहा है बरसात का। बरसात के मौसम में अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें और भीगने से भी बचें। विशेषकर बिजली के तारों और खम्भों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में खतरा हो सकता है। बारिश के मौसम में पानी जनित बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया का खतरा कुछ अधिक होता है। इसलिए हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। बाहर के खाने से परहेज करें। ताज़ा भोजन घर का बना हुआ खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। विटामिन सी से भरपूर फल, गर्म

सूप, हर्बल चाय अपने खाने में शामिल करें, साथ ही मच्छरों से भी अपना बचाव करें। घर के आसपास कूलर, गमले या टूटे हुए बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इससे डेंगू मलेरिया पनप सकता है। अगर आप खुले में सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। पैरों को सूखा रखें, भीगने से बचें, बिजली के उपकरणों से भी बचें। बारिश के मौसम में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिसलन अधिक होती है, तो रफ्तार को धीमा रखें। ये सब वो बातें हैं जो हमें बरसात के मौसम में ध्यान रखनी है, इनका पालन करना है। बात हुई बरसात के मौसम में जानकारी की, और अब सुनते हैं ये गीत।

0: सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।

कुमार सानू और साधना सरगम को आपने सुना। फिल्म का नाम था दीवाना। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन यानी 19 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य कुछ निजी और मनमाने ढंग से जो लोग काम कर रहे थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में हर वर्ष आज ही के दिन बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक निर्णय के उपलक्ष्य में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका उद्देश्य था मुख्य लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर आम जनता, किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। ये तो बात हुई कुछ जानकारी की, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था हीर राजा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। देशगान एक बार आप पुनः सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। 6:15 पर आप सुन सकते हैं ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और प्रधानमंत्री फसल योजना। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर, जिसमें आप सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05। आज हम आपको सुनवाएंगे पदम कुमार पाठक को। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे। 7:31 पर आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे नदिया के पार फिल्म के कुछ गीत। 9:15 पर आप सुन सकते हैं सुहाने तराने। 9:30 पर आज आप सुनेंगे संसद के समक्ष मुद्दे ये कार्यक्रम। इससे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात्रि 11 बजे। हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हमारी ये सभा

बंद होगी रात्रि 11:10 पर। आपको एक बार पुनः स्मरण करा दें, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नदिया के पार फिल्म के कुछ गीत। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पद्म कुमार पाठक को। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

आप सुन रहे थे देश गान, कलाकार थी उषा टंडन, गीत योगेश श्रीवास्तव का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडेय।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया उर्वरकन को संतुलित प्रयोग को अर्थ है फसल की आवश्यकता, मिट्टी की उर्वरता और मौसम को ध्यान पे रख के सभी आवश्यक पोषक तत्व को सही अनुपात, सही मात्रा और सही समय पे देनो। भैया उर्वरकन को इस्तेमाल हमेशा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जांच के आधार पर करना चाहिए ताकि पता चल सके कि खेत में कौन से तत्व की कमी या अधिकता है। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। केवल यूरिया को अंधाधुंध उपयोग मिट्टी की सेहत और उपज को नुकसान पहुंचावे है। रासायनिक उर्वरकन के संग संग जैविक खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद और जैव उर्वरकन को प्रयोग करें जी मिट्टी की जल धारण क्षमता और लंबे समय की उर्वरता को बनाए रखे है। भैया उर्वरक फसल की वृद्धि के अनुसार किस्तन में दें। उर्वरकन को सीधे खेत में फेंकने के बजाय बीज के नीचे उचित गहराई में ड्रिल करवो अधिक प्रभावी हुए है। भैया उर्वरकन के संतुलित प्रयोग करवे ते हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। बेहिसाब उर्वरकन के प्रयोग ते पैसा की बर्बादी तो हुई है, संतुलित प्रयोग ते खेती की लागत कम हुई है। जाके अलावा लगातार असंतुलित उर्वरकन के प्रयोग ते जमीन बंजर हैवे लगे है। संतुलित मात्रा मिट्टी के जैविक गुण और सूक्ष्म जीवन को सुरक्षित रखे है। भैया यूरिया को अत्यधिक इस्तेमाल पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड छोड़े है। संतुलित प्रयोग जा प्रदूषण को कम करे है। भैया जा तरह ते उर्वरकन को संतुलित प्रयोग मिट्टी की उर्वरता सेहत के काजें बहुत आवश्यक है। जावाद के बाद अब बात आज के मन भावन की, जा में सुनो शालिनी शर्मा के स्वर में जी लोकगीत।

शालिनी शर्मा के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। भैया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा करी गई एक ऐसी फसल बीमा योजना है जाको उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीट व बीमारी के कारण फसल खराब हैवे की स्थिति में किसानन को पूर्ण कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करे है। जी योजना पूरे देश में किसानन की आय और टिकाऊ कृषि प्रदान को स्थिर करवे की दिशा में हूँ काम करे है। भैया, जय योजना के माध्यम से किसानन को अपरिहार्य जोखिमन ते हैवे बारे नुकसान को व्यापक बीमा कवर प्रदान किया जाए करो है और जी सुनिश्चित किया जा रहे हो है कि किसानन को स्थिरता के संग उचित वित्तीय सहायता उपलब्ध होए। त्वरित मुआवजे के

अध्ययन ते किसानन की स्थिति स्थिर आय सुनिश्चित करी गई है ताकि फसल विफलता के कारण वे कर्ज में न फंसें या वित्तीय परेशानी को सामना न करें। जाके माध्यम ते आधुनिक उच्च तकनीक कृषि प्रणालीन के उपयोग को प्रोत्साहित कियो गयो है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अभी और बात करेंगे, बातें पहले सुन लें जी लोकगीत, स्वर है सावित्री दीक्षित को।

भैया आनंद ले रहे हैं जालो गीत को, स्वर हो सावित्री दीक्षित को। भैया वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। भैया जा योजना की जो मुख्य विशेषता है उनमें प्रमुख है प्रीमियम दर की। जा योजना में किसानन को प्रीमियम को भार बहुत कम रखो गया है ताकि वे आसानी से भुगतान कर सकें। खरीफ फसल जैसे कि धान मक्का इन फसलन के काजें 2%, रबी फसल जैसे गेहूँ चना इनके काजें 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसल को 5% प्रीमियम दर रखी गई है। जय योजना के काजें अधिसूचित क्षेत्रन में खेती करवे वाले काश्तकार और पट्टेदार दोनों पात्र हैं। यदि काऊ किसान भैया ने कृषि लोन या किसान क्रेडिट कार्ड लियो है तो बीमा अपने आप ही है जाए है। जाके अलावा किसान आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराए सके हैं। तो भैया जी ही बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अब सुनो जी लोकगीत डोरीलाल गोला के स्वर में।

डोरीलाल गोला के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। प्रस्तुत है अगलो लोकगीत, सुनो राम स्वरूप शर्मा के स्वर में जी लोकगीत।

राम स्वरूप शर्मा के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। भैया और जाई के संग आज के मनभावन को यहीं पे दें हैं विराम। सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। आइए अब सुनते हैं फिल्म गंगा की सौगंध से लता मंगेशकर को।

गंगा की सौगंध, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म बैजू बावरा में।

आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों को फिल्म सीमा में। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं पदम कुमार पाठक।

सतिय ऐसो परम विचित्र। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़ पीतु बसन गरे में वैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पदम धरे हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, कहत नरोत्तम संदीपन गुरु

जाती है। रस खाने लगे तन पीतु पटा, सतदामिन की दुति लाजती है। भय बासुरी की धुन कान परे, कल कान ही यो तज भाजती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओड़ पीताम्बर लेल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो मोहि मेरो रस खान, भाव तो मोहि मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी।

गोपी ग्वाल गाय गो सुत सव अति ही दीन बिचारे सूरदास बिन यों देखत चंद बिना ज्यों तारे। सूरदास बिन यों देखत चंद बिना ज्यों तारे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमत अरो नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अतेत साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत

तन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जोगति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देत गीत सवरी का प्रवन बहुत जिय जानी। ऐसो को दार जग माही सो संपत दस शीस अरप कर रावण सेव पहुलीनी। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहस हर दीनी। तुलसीदास सब बाते सकल सुख जो चाह सुमन केरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाह सुमन मेरो। तो बुझ राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। करे कृपा निधि तेरो जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पत

बखान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज जग देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। शिक्षक हो सिगरे जग को शिक्षक हो सगरे जग को। तियता को कहा अब देती है शिक्षा। जे जप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नए इच्छा। मेरे ही ये हर के पद पंकज मेरे ही ये हर के पद पंकज 12,000

कोदो सवा जुर तो भर पेट, कोदो सवा जुर तो भर पेट, तो चाहत ना दद दूध मिठौती, सीत बीतीत भयो शिष यात हो टिके यो तुम्हें न पठौती। जानती जो नहीं तू हरिसो, जानती जो नहीं तू हरिसो, तुम्हें काहे को द्वारी।

0: द्वारिका जाहू जू, द्वारिका जाहू जू, आठ आयम जक यक तेरे। द्वारिका जाहू जू, द्वारिका जाहू जू, आठ आयम यह जक तेरे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जे कहा अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया, द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तह भूपति जानन पावत नेरे। पांच सुपारी तो देखो बिचारे के, भेंट कुचारी न चावर मेरे। पांच सुपारी तो देखो बिचारे के, भेंट कुचारी न चावर मेरे। बैसोई राज समाज बनो, बैसोई राज समाज बनो, गजबाज घने मम संभ्रम छायो। कह दो पर्यो कहु मार्ग भूले के, फेरिक में अब द्वारे का आयो। भौन बिलोक वो को मन लोचत, भौन बिलोक वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोंपड़ी को कहु खोजन पायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोंपड़ी को कहु खोजन पायो।
1: आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे पद्म कुमार पाठक। भैयाओं, आप सब जानो हो कि हमारे कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। जब ही तो कहिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस हर जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, झूठे फल सवरी के खाए, बहुविध करत बढ़ाई। ऐसे कन्हैया जिनकी पार शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे। नारद से सुख व्यास रटें, पचहारित पुण्य की पार न पामे। ताह अहीर की छुवरिया छचियावर छाछ पे नाच नचामे। ब्रजगोप का छचियावर छाछ पे वह ब्रह्मांड के नायक को, जाकि एक भ्रगटी में प्रलय सक है, वायु अपने आंगन में नचामे हैं। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, व्रज वनिता सब पुष्प हैं मधुकर गोकुल चंद। ये मधुकर गोकुल चंद हैं, इनकी पार ब्रजगोप का कहें, काउदिन तो हाथ लगाए दूंगी वो कान्हा वंशी बारे। उस ब्रह्मांड के नायक को कोई हाथ लगा सकता है? लेकिन वो प्रेम की बस गुपकाएं कहती हैं कि कोई काउदिन तो हाथ लगाए दूंगी वो का

अनावंशी भारे, ऐसे प्रेम के रस के और हमारे ब्रजवासिन के अनन्य भगवान कृष्ण की जो महिमा है बाय आप साफ भली बात जानो हो। और यही के संग ये कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं।

0: कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जहाँ
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
1: और ये मेरी बड़ी आपके नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
4: RBI कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खटके ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। राज्य के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए यूपी को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रायः आपदा व जनधन की व्यापक हानि के बाद हम लोग सक्रिय होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी व जागरूकता जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है।
6: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
5: नवीन मुख्यालय भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को आज प्रशासक बना दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। राज्य सरकार ने आज 826 ब्लॉक प्रमुखों की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मोहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
5: संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन NXC में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को सर्वदलीय बैठक में शामिल करने पर विरोध जताया। पेश है एक रिपोर्ट।
8: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते

0: हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
2: अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले के बीच अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम न्यासी बैठक बुलाई गई है। बैठक के एजेंडे में SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा और ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेनदेन के फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व और मंदिर की पूजा व्यवस्था रामानंदी परंपरा के अनुसार संचालित करने समेत कई मांगे उठाई हैं। अब इस मामले पर सभी की निगाहें 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति है। श्री खडसे ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। ये शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने और नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए आज सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेशवासियों को मिला है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों और तराई क्षेत्रों में ये क्रम आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा।
3: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला आने वाले अगले 24 घंटे में भी रहेगा और आने वाले अगले 3 दिनों तक। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा या
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्याम सुहानी।

किशोर कुमार और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म शराबी में। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम है आजा सनम।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म नमक हलाल में।
1: अरे ना ना ना ना ना ना, ना।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को आप सुन रहे थे। क्षमा कीजिए, पंकज उदास और साथियों को आपने सुना फिल्म नाम में, और आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को फिल्म दिल में।

आशा भोसले और शब्बीर कुमार को आपने सुना। फिल्म का नाम था सोहनी महिवाल। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देश गान।

सामवेद सुरों में आप सुन रहे थे देशगान। ये कार्यक्रम संपन्न होता है आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं जसपाल सिंह और हेमलता को।

आप सुन रहे थे जसपाल सिंह को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आज आप सुन रहे हैं नदिया के पार फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और हेमलता को।

0: के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप संपन्न होता है। आपने नदिया के पार फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
3: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
4: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility, but in our house it has become a regular practice टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ

0: हाउस टू डन।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक

0: मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत।

लता मंगेशकर और मुकेश को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था गोरा और काला, गंगा जमुना सरस्वती, ये फिल्म का नाम, जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: आप सुन रहे थे उदित नारायण को, फिल्म का नाम था गजर। और अब इसी के साथ सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 9:30 होने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कहा चल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई वो समझी।
2: का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा

0: सभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खास कर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था JPC को, वन नेशन वन इलेक्शन का JPC को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है, वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से TMC का देखिए क्या हाल हुआ, आज TMC ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी

0: पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि पैथॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कर रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, MP MLA को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और SIR का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, MSP के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटे बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है। मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
1: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया, नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं, उनके जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
0: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति

0: हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो ईरान, वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं हो और एसआईटी आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उनपे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है, ये और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती।

0: राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे, हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है, जैसे या उस डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखें जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है। हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष

0: रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
1: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग में, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
0: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, वो उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है, और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के

0: परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मधुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरलम में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रवि बासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Trichy Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
0: आज के कार्यक्रम में श्रीमती बालामणि ईश्वर के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव भारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद ब्रोव बारमा composed by Saint Tyagaraja in Rag Bahudari set to Adi Taal.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी।
1: In the Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, you are listening to a vocal recital by Srimati Balamani Ishwar. She is accompanied by Parur Srimati M.K. Anantalakshmi on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam, and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Listen now to Pakkala Nilapati, composed by Saint Tyagaraja in Raag Karahara Priya, set to Misra Chaputal.

0: रचना के अंत में आपने सुना तनी आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद, सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a Tani Avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi. Manadir.

रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मदुरई, दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में

0: सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered